यह आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल है, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की नवी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त सन 2026 सुबह के 8:55 होने को हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

9:10 पर आप सुनेंगे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस और उसके बाद में 9:20 पर कार्यक्रम होगा वंदना। 9:40 पर वक्त रहेगा गैर फिल्मी गीतों का। सुबह 10 आप सुनेंगे गाने पुराने जमाने के और उसके बाद में 10:30 पर गाने

0: शाम 5 बजे आप सुनेंगे युवाणी कार्यक्रम। महिला जगत कार्यक्रम का वक्त रहेगा 5:30 पर। 6:20 पर आप सुनेंगे माटी के स्वर कार्यक्रम। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी शाम 7 बजे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 7:30 पर। और सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल से आप सुनेंगे रात्रि के 8 बजे। 8:30 पर कार्यक्रम होगा विविधा, जिसमें आप सुनेंगे झलकी। ये थे आज प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर से।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में देर रात तक मंथन जारी रहा। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। कजली तीज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। भाद्र माह की चतुर्थी भी आज। और प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री दो दिन की किर्गिस्तान यात्रा पर बिश्केक पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर किर्गिस्तान के मंत्रिमंडल के अध्यक्ष आदिल बेक कासिमलिएव ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पारंपरिक किर्गिज नृत्य की प्रस्तुति भी हुई। श्री मोदी सम्मेलन से इतर एससीओ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और कई अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने कहा है कि भारत सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्रीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए एससीओ देशों के साथ मिलकर काम करेगा। सम्मेलन का विषय एससीओ के 25 वर्ष सतत शांति, विकास और समृद्धि की ओर एक साथ है। सम्मेलन में क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी अभियान और सीमा पार खतरों से निपटने पर चर्चा होगी। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन होने के चलते नामांकन स्थलों पर काफी गहमा गहमी रहने की संभावना है। नामांकन दोपहर 3 बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। अब तक प्रदेश भर के 10,245 वार्डों के लिए 13,000 से ज्यादा नाम पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। नामांकन पत्रों की जाँच 1 सितम्बर को होगी, जबकि उम्मीदवार 3 सितम्बर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद चुनाव मैदान की स्थिति स्पष्ट होगी। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इससे पहले कल प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन देर रात तक जारी रहा। गौरतलब है कि इन नगरीय निकायों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितम्बर और दूसरे चरण में 11 सितम्बर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी, जबकि नगर निकायों के अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को कराया जाएगा। प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए इन दिनों विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर आदर्श आचार संहिता के तहत शराब बनाने, इसके भंडारण, परिवहन और इसकी बिक्री पर जिलों में दबिश दी जा रही है। सरहदी क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। आबकारी निरोधक टीमों द्वारा श्रीगंगानगर जिले में 600 लीटर वॉश सहित शराब भट्टियों को नष्ट किया गया। में 30 लीटर अवैध हथकड़ शराब भी बरामद की गई। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 112 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में चलाए गए अभियान के दौरान 48 पुलिस टीमों में शामिल 219 पुलिसकर्मियों ने 302 स्थानों पर एक साथ दबिश दी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 16 ग्राम चिट्टा, करीब 17 किलो डोडा पोस्त, 334 पव्वे अवैध शराब और 2 धारदार कापे बरामद किए। अभियान में जघन्य मामलों में वांछित 5 आरोपी, 1 हिस्ट्रीशीटर और 8 स्थायी वारंटी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने बताया कि अपराधियों और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। राज्य में इन्फ्लुएंजा ए एच वन एन वन यानी स्वाइन फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। पिछले 27 दिनों में प्रदेश में 55 मामले सामने आए हैं। विभाग ने आमजन से फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देने पर सावधानी बरतने और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक एहतियात अपनाने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जुकाम, बुखार या फ्लू के लक्षण होने पर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है। सवाई मानसिंह अस्पताल में मौसमी बीमारियों के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील महावर ने बताया कि प्रदेश में स्थिति सामान्य है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने एहतियात के तौर पर मास्क का उपयोग कर ऐसे लक्षण होने पर चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह दी है।
1: जो नॉर्मल फ्लू होता है उसमें बुखार 100-101 तक होता है, लेकिन इसमें बुखार 103 और 4 तक रहता है। तो एक तो हाई ग्रेड फीवर है, बाइलजिया पूरी बॉडी में मसल में होता है, मास्क में दर्द रहेगा उसके, खांसी रहेगी उसके, और कभी कभी कुछ केसों में उल्टी दस्त भी होते हैं। ये सब चीजें एक स्वाइन फ्लू में होती है। बचाव और सावधानियों की अगर मैं बात करता हूँ, जब भी घर में कोई सदस्य बीमार हो जाए तो एक लेव जैसे बीमार

0: बीमार होने के बाद उसको मास्क जरूर लगाए, क्योंकि वहीं से वो स्प्रेड होता है घर में। बुजुर्ग महिलाएं हैं घर की, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, छोटे बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है लंबे समय से, इनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मास्क जरूर लगवाना। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से घरेलू इलाज ना लेके, सबसे इम्पोर्टेंट है घरेलू इलाज ना लेके डॉक्टर को दिखाएं।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में कजली तीज पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह है। आज ही भाद्र माह की चतुर्थी भी मनाई जा रही है। महिलाएं हाथों में मेहंदी रचाने और 16 श्रृंगार के साथ निर्जला व्रत रख रही हैं। इस अवसर पर पाली जिले में महिलाएं पारंपरिक तीज गाते गीत गाते हुए झूले झूलकर पर्व की खुशियां मना रही हैं। शाम को महिलाएं सखियों के साथ मिट्टी और गोबर से तलाई बनाकर निमड़ी की पूजा करेंगी। इसके बाद चांद के दर्शन और पूजन कर पति की लंबी आयु की कामना करेंगी। महिलाएं आग के पत्तों की पत्तल पर सत्तू और फल रखकर व्रत खोलेंगी। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि नवविवाहिताओं में पहली तीज को लेकर विशेष उत्साह है।
2: आज भाद्र मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर प्रदेश भर में सातुड़ी तीज मनाई जा रही है। इसे कजली तीज या बड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आज सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर खंड सुहाग और घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करेंगी। कल सिंजारे के मौके पर महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई। सुहागिन महिलाएं सायकाल 16 श्रृंगार कर तीज माता की पूजा अर्चना करेंगी। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर सत्तू खाकर अपना व्रत खोलेंगी। तीज के मौके पर घरों में कई तरह के पकवान बनाए जाएंगे। मुख्य रूप से सातू का भोग तीज माता को लगाया जाएगा। वहीं आज चौथ का व्रत साथ होने से चौथ माता और भगवान गणेश की पूजा भी साथ ही की जाएगी। नलमा धादीज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कल श्रीगंगानगर 40 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ प्रदेश में सबसे गर्म रहा। फिलहाल बारिश का दौर थमने से प्रदेश में उमस और गर्मी का असर बना हुआ है। हालांकि अधिकांश शहरों के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। जोधपुर से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को कल से नई उड़ान की सुविधा मिलेगी। एयर इंडिया एक्सप्रेस मुंबई जोधपुर दिल्ली के बीच ये नई उड़ान शुरू करेगी। उड़ान सुबह 11:05 पर मुंबई से रवाना होकर दोपहर 12:55 पर जोधपुर पहुंचेगी और वहां से दोपहर 1:30 दिल्ली के लिए रवाना होगी। वापसी में उड़ान दिल्ली से दोपहर 3:45 पर रवाना होकर जोधपुर होते हुए शाम 7:20 पर मुंबई पहुंचेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रमुख राजनीतिक दलों में देर रात तक मंथन जारी रहा। आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन। कजली तीज का पर्व आज परंपरागत रूप से मनाया जा रहा है। भाद्र माह की चतुर्थी भी आज। और प्रदेश में 3 सितंबर से उत्तर पूर्वी और पूर्वी भागों में बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1:00 प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। 9:10 हुए हैं। ये सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस।

भरत जी को चित्रकूट के मार्ग पर अग्रसर होते देख देवराज इंद्र के मन में जो सोच और चिंता हो गई थी देवगुरु बृहस्पति के शीतल वचनों से उसका शमन हो जाता है। यमुना तट पर पहुंच प्रेम विफल भरत की आंखों में प्रेम और व्यथा के आंसू उमड़ आते हैं। श्री राम के विरह रूपी सागर में डूबते उतराते उनका विवेक जागृत होता है कि शीघ्र ही उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। निषाद राज की सेवा और सहायता से उन्हें पूर्ण संतोष मिला है। मार्ग में जहां जहां श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन स्थानों को वो श्रद्धा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आसपास के गांवों के स्त्री पुरुष भरत का रूप और भ्रातृप्रेम देख परम आनंदित हैं।

अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 9:20 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह पहली प्रस्तुति आवाज नरेंद्र चंचल की है।

नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

अभी आपने सुनी ये भक्ति रचना सतीश देहरा की आवाज में। लीजिए सुनिए ये अगली भक्ति रचना।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अनूप जलोटा के गाए इसी भक्ति गीत के साथ वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमे चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं गैर फिल्मी गीत। यह है पहली पेशकश।

एल्बम गुजारिश के इसी गाने के साथ गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। सुबह के 10 बजे हैं, आइए सुनते हैं गाने पुराने जमाने के। यह है पहली पेशकश।

ये है गाना फिल्म चोरी चोरी से। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें हैं, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: जिंदगी की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: लीजिए गाने पुराने जमाने में, यह है अगली पेशकश रफी साहब की आवाज़ में फिल्म भरोसा से।

गीत के साथ गाने पुराने जमाने के यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 10:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं गाने नए तराने नए।

अभी आपने सुनी ये पहली पेशकश सोनू निगम और जावेद अली की आवाज़ में फिल्म जब वी मेट से। यह है गाने नए तराने नए की अगली पेशकश।

ये गाना हमने लिया है फिल्म जग्गा जासूस से, अरिजीत सिंह और अमित मिश्रा की आवाज में, अमिताभ भट्टाचार्य की बोल हैं और प्रीतम का संगीत है।

सूट पहन के बन गया दूल्हा। ओ सूट पहन

अभी आपने सुना ये गाना फिल्म सिंग इज किंग से दलेर मेहंदी की आवाज़ में। लीजिए गाने नए तराने नए में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म जग्गा जासूस का, माफ़ कीजिएगा, लीजिए सुनिए फिल्म संजू का ये गाना।

0: समझे।
1: बढ़िया।
2: लीजिए सुनिए ये अगला गाना फिल्म सनम रे से।

0: अभी आप सुन रहे थे गाने नहीं तराने नहीं, ये है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल FM बैंड 103.7 MHz पर। दिन के 11 बजे हैं, ये सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
1: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद

तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कार्यक्रम है रंग तरंग। लीजिए सुनिए एक एल्बम सॉन्ग अलीशा चुनॉय की आवाज में, म्यूजिक है बिद्दू का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
0: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
1: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगला गैर फिल्मी गीत है लक्की अली की आवाज में। गीत को लिखा है असलम ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुना जाए फाल्गुनी पाठक की आवाज में गैर फिल्मी गीत। इस गीत को लिखा है समीर ने। एल्बम का नाम है याद पिया की आने लगी।

जेरमाई जैक्सन अदनान समी की आवाजें हैं अगले गीत में। इस गीत को लिखा है इरफान सिद्दीकी ने, संगीत है अदनान समी का, एल्बम का नाम है एक लड़की दीवानी सी।

साथियों, रंग तरंग कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग है शान की शानदार आवाज में। गीत है विशाल ददलानी का, म्यूजिक कंपोज किया है विशाल शेखर ने। एल्बम का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

आइए सुने अगला गैर फिल्मी गीत शोभा मुद्गल की आवाज में। रचना है अनिल पांडे की, संगीत रचना संदेश शांडिल्य की, एल्बम का नाम है प्यार के गीत।

हर तरफ धुंध है, जुगनू है, ना चराह कोई कोई पहचानेगा। बस्ती में अगर जाऊंगा, इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। गुलुकार गुलाम अली की आवाज में समात कीजिए शायर मोइन नजर का कलाम। एल्बम का नाम है तेरे शहर में।

0: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी गीत है गायक और संगीतकार भूपेंद्र हजारिका की आवाज में। गीतकार हैं गुलजार, एल्बम का नाम है मैं और मेरा साया।
1: आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर,
2: आमी एक जाजाबर।
1: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंद्र का।
1: भूले निजेर घर, आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है, और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

खुदा का जिक्र करें या तुम्हारी बात करें, हमें तो इश्क से मतलब किसी की बात करें। शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समात फरमाए चंदनदास की आवाज में। एल्बम का नाम है कितने ही रंग, और ये होगी कार्यक्रम की अंतिम पेशकश।

0: रंग तरंग।
1: श्रोताओं, आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। राष्ट्रीय सेवा विविध भारती, इस वक्त दिन के 12 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे हिंदी समाचार बस थोड़ी ही देर में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग, मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के

0: नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर 24,026 पर पहुंच गया, वहीं सेंसेक्स 390 अंक गिरकर 76,875 पर पहुंच गया। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है कुछ यादगार सदाबहार गीतों की माला से। कार्यक्रम का पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं जीएल रावल, संगीतकार हैं सोनिक ओमी। फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया।

कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, तर्ज है शंकर जय किशन की, फिल्म का नाम है आरजू।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
4: अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद एक बार फिर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यादों की महफिल में सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। फिल्म का नाम है राजा और रंक।

इंदिवर का लिखा गीत है मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। धुन है कल्याण जी आनंद जी की, फिल्म का नाम है पारस।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में वो गीत जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, तर्ज थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम था जिगरी दोस्त। आइए सुना जाए अगला गीत लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है आप आए आए दिन बहार के।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं नीरज, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है शर्मीली।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण आकाशवाणी नागौर का। ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 1 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जयपुर से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की अपनी 2 दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल है। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दूसरे और अंतिम दिन शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते नामांकन स्थलों पर प्रत्याशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। विभिन्न जिलों में नामांकन पत्र भरने वाले लोग अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में प्रत्याशी पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई है। इस बीच जयपुर नगर निगम के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। निगम के 150 वार्डों में से 145 वार्डों के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, जबकि शेष वार्डों के नाम विचाराधीन है। वहीं कांग्रेस की सूची का इंतजार है, थोड़ी देर में सूची जारी होने की संभावना है। प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। कल नामांकन पत्रों की जांच होगी। 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश में 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी।

0: नगर निकाय अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को कराया जाएगा। आठवें वेतन आयोग की टीम जयपुर दौरे पर है। आज टीम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रही है। टीम इन दिनों जयपुर में केंद्रीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों से भी सुझाव ले रही है। आयोग के दल ने 31 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधे मुलाकात भी की है। संवाद के दौरान नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि और न्यूनतम मूल वेतन सहित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव लिए जा रहे हैं। दोपहर बाद दल का HCM रीपा में महिला प्रतिनिधियों के साथ संवाद का कार्यक्रम है। आयोग के प्रतिनिधिमंडल में सदस्य सचिव पंकज जैन, अतिरिक्त सचिव ब्रजेंद्र नवनीत और संयुक्त सचिव नीरज कुमार गायानी सहित अन्य अधिकारी शामिल है। जोधपुर में रेल यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए लोकोमोटिव में नया विजिलेंस स्विच सिस्टम लगाया गया है। रेलवे ने RDSO के नए मानकों के अनुरूप भगत की कोठी शेड के 166 इलेक्ट्रिक और डीजल इंजनों में ये व्यवस्था की है। नए सिस्टम से लोको पायलट के लंबे समय तक कोई गतिविधि नहीं करने पर ट्रेन में स्वचालित रूप से आपातकालीन ब्रेक लग सकेंगे। नए सिस्टम में ड्राइवर डेस्क पर हैंड ऑपरेटेड पुश बटन लगाया गया है। और ब्यौरा हमारे जोधपुर संवाददाता से।
1: RDSO की मॉडिफिकेशन के अनुसार स्विच को ड्राइवर डेस्क पर हैंड ऑपरेटेड पुश बटन में परिवर्तित किया गया है। इससे ड्राइवर सतर्क रहेगा और ट्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बैकअप पुश बटन भी अपग्रेड किया गया है। उसका उपयोग विजिलेंस रीसेट के लिए किया जा सकेगा। पुराने फुट ऑपरेटेड विजिलेंस स्विच को लोको पायलट कभी कभी बिना ध्यान दिए नियमित रूप से दबाते थे, जिससे सुरक्षा की अपेक्षित सुनिश्चितता कम रहती थी। नए सिस्टम में ड्राइविंग के दौरान शटल बदलने या BCD रीसेट स्विच दबाने पर सिस्टम अपने आप रीसेट हो जाएगा। यदि 60 सेकंड तक कोई गतिविधि नहीं होती है तो पहले देखने का और उसके बाद सुनने की चेतावनी मिलेगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भारतीय नौसेना में आज एक और आधुनिक पोत शामिल किया गया। निस्तार श्रेणी की दूसरी डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM 103.7 MHz पर दिन के 1:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं मुंबई से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।
3: मेरे उस बेपरवाह सनम को बता दे कि उसकी सादगी ने हमें दीवाना बना दिया है। अगला मैसेज था ये कि सच्ची मोहब्बत कोई समझौता नहीं, वो खुद का विसर्जन है। मोहब्बत में मैं मिटता है और सिर्फ तू ही बचता है। इसके बाद अगला मैसेज इन्होंने लिखा है कि प्यार एक साधारण इंसान को भी शायर और पूरी दुनिया को एक खूबसूरत ख्वाब बना देता है, और एक पागल आशिक के लिए उसका महबूब ही उसकी बंदगी बन जाता है। तुम्हारी आंखों के आईने में मैं अपनी पूरी हयात देखूं, अगर मिले जो तुम्हारा साया तो धूप में भी बारात देखूं। अच्छा, अगला ये मैसेज हमें मिला है कि दो दिलों की मोहब्बत भरी दीवानगी दास्तां बयां करती है। दमदार इबारत है, कायनात की इस कुदरती करिश्माई तोहफा मोहब्बत की तड़प तन्हाई का खूबसूरत चित्रण प्रेमी युगल के बेसब्री बेकरारी को खूबसूरती से चित्रित किया गया है। और प्रेम पूर्ण संगीत सफर के इस कार्यक्रम में हम श्रोतागण डुबकी लगाकर तर जाने को बेकरार रहेंगे। तो साथियों, शुरुआत में तो हमने आपको कुछ संदेशे पढ़कर सुना दिए। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस गीत के साथ में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर, पद्मिनी और सुषमा श्रेष्ठ की। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है यादों की बारात। और बचपन में बिछड़े तीन भाई उनके माता पिता की हत्या का बदला लेने और बिछड़कर फिर से मिलने की एक क्लासिक कहानी थी यादों की बारात। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस गीत में जो सबसे छोटा बच्चा था वो आज का बड़ा सुपरस्टार है, कौन है वो, और इस फिल्म में खलनायक अजीत का नाम क्या था, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे उनका नाम भी हमें बताएं। तो ये तीनों बातें आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। तब तक सुनते हैं ये खास गीत। इस खास गीत के जरिए बिछड़े भाई कई सालों बाद आपस में मिलते हैं।

आवाज की दुनिया के दोस्तों ने हमें बहुत सारे जवाब दे दिए हैं कि वो छोटा सा प्यारा सा क्यूट बच्चा था आमिर खान, और जो फिल्म में खलनायक थे उनका नाम था शाकाल, और जीनत अमान के अपोजिट जो हीरो थे वो थे विजय अरोड़ा। एक मित्र ने ये मैसेज भेजा है कि सुरीला सफर कार्यक्रम इतना सुरीला होता है कि हर दिन इसके साथ दोपहर का भोजन भी स्वादिष्ट लगने लगता है। और ये क्या लिख दिया आपने कि आज की इबारत में बहुत सारे गाने हैं, बस हमें लिखने का समय नहीं मिल पाया। चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं।

साथियों, अब तक तो आप भी समझ ही गए होंगे कि आज हम ऐसी फिल्मों के गीत लेकर आए हैं जिनमें परिवार से बिछड़े लोग कई सालों के बाद आपस में मिल जाते हैं। तो इसी कड़ी में अगला गीत है इस फिल्म का, जिसमें बचपन में बिछड़े तीन भाई अलग अलग धर्म और माहौल में पलते बढ़ते हैं। तो इस ब्लॉकबस्टर मूवी में यानी कि अमर अकबर एंथनी में उनकी माताजी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री का नाम हमें बताएं, और साथ ही इस फिल्म में रॉबर्ट और किशन लाल कौन थे इसकी भी जानकारी हमें दे दे। इसके अलावा बिछड़ के मिलन की और कौन सी फिल्में आपको याद आ रही हैं हमें वो भी बताएं। तब तक सुनते हैं ये गीत जिसमें आवाजें हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र सिंह की। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रेष्ठ वही गायिका हैं जो बाद में पूर्णिमा बन गई, ऐसा मंदाकिनी जोशी ने एक कार्यक्रम में बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था, सही बात है वो। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो कमेंट्स में हमें जवाब मिले हैं वो ये है कि निरूपा रॉय ने माँ की भूमिका निभाई थी इस फिल्म में और किशन लाल का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता प्राण, और फिल्म के मुख्य खलनायक रॉबर्ट का किरदार निभाया था मशहूर अभिनेता जीवन ने, जो एक बड़े बॉस और स्मगलर थे इस फिल्म में। तो साथियों हमें ये बताइए कि क्या आपके आसपास कभी ऐसा भी हुआ कि कोई बिछड़ के मिल गया, या कभी कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर आपको मिला, तो फिर उसे कैसे घर पहुंचाया आपने, या कैसे उसे घर पहुंचाना चाहिए? कोई घर छोड़ के चला जाता है तो उसे खोजने के अभियान में आप भी शामिल हुए थे कभी, या किसी को ढूंढने में आपने कोई सहायता की थी? कभी कभी घर का पालतू जानवर भी खो जाता है तो क्या करते हैं आप, कैसे ढूंढते हैं, और मिल जाए तो कैसे पार्टी करते हैं? हम भी तो जाने, हम भी तो सुने, लिख भेजिए हमारे FB पेज पर। क्या कभी खोया पाया केंद्र पर गए हैं आप? कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिल्म का नाम है धर्मवीर। तो धर्मवीर फिल्म में दोनों बिछड़े भाइयों के रोल में कौन से अभिनेता थे उनके नाम बताएं। वैसे इस फिल्म में एक हीरो का तो नाम छुपा है, और साथ ही अपने विचार भेज दीजिए हमें।

हमारे दोस्तों ने हमें जवाब भेज दिए हैं कि धर्मवीर में दो जुड़वा भाइयों के रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और जितेंद्र, और उनके साथ में जीनत अमान और नीतू सिंह थी। एक दोस्त ने लिखा है कि सच्चे दोस्त समय आने पर काम आते हैं। ये कमेंट मिला है कि 4 साल पहले हमारा पालतू जानवर घर से गायब हो गया था। बहुत खोजा गया, खोया पाया केंद्र में भी गए और कुछ भी पता नहीं चला। बहुत दिनों तक घर के सभी लोग उसे ढूंढते रहे, उदास रहे, याद तो आज भी आती है। राहों में चाहे कितने ही कांटे हो, वक्त चाहे कितनी ही दूरियां क्यों ना ले आए, सच्चा प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्योंकि मोहब्बत फूल की तरह नाजुक जरूर होती है, मगर उसकी खुशबू उम्र भर साथ रहती है। मैं और तुम से हम हो जाना ही मोहब्बत है। प्यार का एहसास अपने आप किसी से रूह से निकलने वाली आवाज से होता है। वो किससे होगा या नहीं होगा या कहाँ होगा, ये कोई नहीं कह सकता। बस सब आत्मा और समय का खेल है। सुरीला सफर कार्यक्रम में अपने विचार, अपनी बातें, अपने संवाद, अपने पैगाम, अपने संदेश, अपने मैसेज, अपने कमेंट्स आपने भेज दिए हैं जो हम तक पहुंच गए हैं और लगातार आप भेज रहे हैं। तो उन सारी बातों को, संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में। इस दार्शनिक गीत के बोल लिखे हैं शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है धर्म करम, जिसकी कहानी नाटकीय और भावुक थी। तो इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था और खलनायक की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, लिख दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो लगातार भेजते रहिए अपने कमेंट्स।

0: दोस्तों आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि रणधीर कपूर और राज कपूर ने इस फिल्म का निर्देशन किया था और मुख्य विलन थे प्रेम नाथ।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।

0: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
1: प्रेम का अंत समाज के हाथों से हुआ है, यही वजह है कि शायरों ने भी मोहब्बत की खूबसूरती से ज्यादा उसके अंजाम के बारे में लिखा है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया और मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोई। साथियों, अब बात करते हैं समय और भाग्य के फेर में बिछड़ जाने वाले परिवार की कहानी की, जहां वक्त सबका अलग अलग इम्तिहान लेता है और आखिर में ऐसे हालात बनते हैं कि सब आमने सामने आ जाते हैं। निर्माता बीआर चोपड़ा की ये फिल्म हमें क्या सीख देती है वो बताएं, और लाला केदारनाथ की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता का नाम भी बता दें। और हाँ, इस फिल्म का एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, वो कैसे भूल सकते हैं, तो लिख दीजिए जल्दी से। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में, नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रवि का, फिल्म का नाम आप बताएंगे हमें और साथ में ये भी बताएंगे कि इस जोहरा जबी का नाम क्या है।

हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि मोहब्बत वो जुनून है जो मिटती नहीं फना होकर, ये रूह में बसती है सांसों की सदा होकर, चांदनी का क्या गिला जब हुस्न ही महताब बने, हर बात में शोखियां हैं हर हर अदा लाजवाब बने। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारे गीत हैं आज इबारत में, और उन्होंने गीत के बोल लिखे हैं कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, ऊपर से आप लोग भी इम्तिहान लेने लगे हैं तो हमें तो चक्कर आ रहे हैं, तो ये तो नहीं बताया कि चक्कर क्यों आ रहे हैं। कमेंट्स में जो जवाब मिले हैं उसमें लिखा है कि ये मशहूर डायलॉग बोला था राजा यानी कि राजकुमार ने, चिनोई सीट जिसके अपने घर शीशे के हो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, और लाला केदारनाथ का किरदार निभाने वाले अभिनेता थे बलराज सहानी, और हिंदी फिल्मों की पहली जोहरा जबी का नाम है अचला सचदेव, और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे इस फिल्म में वरिष्ठ अभिनेत्री ने काजोल की दादी का किरदार भी अदा किया था। तो साथियों अब बात करते हैं एक्शन और थ्रिलर फिल्म की। ये कहानी है बचपन में बिछड़े दो भाई मोहन और सोहन की। बड़ा भाई सीआईडी अधिकारी और छोटा भाई गैंगस्टर बन जाता है इस फिल्म में। तो इस फिल्म में विलन का किरदार निभाने वाले कलाकार का नाम हमें बताएं, और ऐसे भी इसमें कलाकार थे जिन्होंने हमेशा पुलिस कमिश्नर की भूमिकाएं निभाई थी, तो उस अभिनेता का नाम भी लिख दें अपने संदेशों में। और अब फिल्म का नाम, गीतकार, संगीतकार आप बताएंगे क्योंकि आपको सब पता है। तो मोहन सोहन कौन थे, और इस ये भी बताएं कि इस फिल्म की शूटिंग मुख्य रूप से किस जगह पर हुई थी, हमें ये भी बताएं।

शर्मो हया का पर्दा दुश्वार नहीं है, अजी हल्का सा एक पर्दा है, दीवार नहीं है।

जिंदगी में कभी साथ न छोड़ेंगे, थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ न छोड़ेंगे।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं कि इस फिल्म की शूटिंग बिहार के नालंदा, खंडर और राजगीर के जंगलों में हुई थी। देव आनंद, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, इफ्तखार, जगदीश राज, एक साथ सारे नाम लिख दिए आपने। इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की, गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम था जॉनी मेरा नाम। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि जब मैं लगभग 2 साल का था तब मेरी बड़ी दीदी मुझे शहर में सब्जी मंडी लेकर गई थी। जब घर लौटी तो केवल सब्जियां ही थी घर पर। माता जी ने पूछा कि भैया कहाँ है, तब दीदी को समझ आया कि मैं वहीं छूट गया। तब वे दौड़कर आईं और वहां आकर देखा तो मैं वहीं खड़ा रो रहा था। बस इतना ही किस्सा है बिछड़ने और मिलने का। तो हम भी आपसे पूछ लें कि आप मिले कि नहीं। एक साथी ने लिखा है कि वक्त फिल्म, इससे हमें ये सीख मिलती है कि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए हमें वक्त की कदर करना चाहिए। साथियों, बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ जाने वाले उस बच्चे की कहानी जो समाज में खुद को लावारिस पाता है, उसे समाज में अपनी असली पहचान और अपने पिता को ढूंढने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ता है। तो आइए सुनते हैं उसे फिल्म का गीत। तो बताइए उस गीत के बोल क्या हैं, गीतकार का नाम क्या है, फिल्म का नाम भी बता दीजिए, संगीतकार भी बता दीजिए, और साथ ही ये भी बताइए कि इस मूवी में गंगू गणपत किरदार को किस दिग्गज महान अभिनेता ने निभाया था।

जिसकी बीवी मोटी,

0: साथियों हमें जवाब मिले हैं कि फिल्म का नाम था लावारिस, अलका याग्निक की आवाज थी, गीतकार थे अंजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और गंगू गणपत की जो जो किरदार जिस अभिनेता ने निभाया था उनका नाम था डॉक्टर श्री राम लागू। एक श्रोता मित्र ने लिखा है कि वक्त फिल्म की एक सीख उन्हें और अच्छी लगती है कि कितने ऊंचे हो जाएं पर आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, वक्त बहुत बलवान होता है, एक झटके में अर्श से फर्श पर ला देने के का सामर्थ्य रखता है। फिल्मों में खोए हुए भाई बहन पिता पुत्र तो मिल जाते हैं किंतु हमारे कमेंट्स गायब ऐसे होते हैं कि मिलना मुमकिन नहीं लगता। वक्त वक्त फिल्म का दूसरा मशहूर डायलॉग है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाएगा।
1: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा जा रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको बता देते हैं कि इस फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। आवाजें हैं लता मंगेशकर, आशा भोसले और महेंद्र कपूर साथियों की। इस गीत को लिखा है अनजान ने, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का, और इस फिल्म में अभिनेता का नाम लोगों ने लिख दिया है अमिताभ बच्चन।

साथियों, सुरीला सफर के हम सफर बनकर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, अपनी बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए। आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद और आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा का सबसे सुंदर संदेश चरैवेति अर्थात चलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वेद वाक्य हमें सिखाता है रुक जाना जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन गतिमान है, जैसे जल यदि स्थिर हो तो वो उपयोग के लायक नहीं होता और प्रवाहमान जल शुद्ध स्वच्छ उपयोग युक्त होता है। समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता, हमेशा बदलता रहता है, चलता रहता है। इसी तरह हमें भी जीवन में कभी नहीं ठहरना है। यात्रा सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने को ही नहीं कहते, यात्रा जीवन को समझने, नए नए अनुभव प्राप्त करने और निरंतर कर्म करते रहने, स्वयं को निखारने और सदैव गतिमान रहने, सीखने और प्रगति पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। तो चलिए चले चलते हैं जीवन की सुगम निर्गम धूप और छांव की इस यात्रा में।

0: भारत में तो यात्राओं और देशाटन की गौरवशाली परंपरा रही है। यात्राओं से हमें अलग अलग स्थानों को देखने, जानने, तरह तरह की लोक संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलता है, जिससे हमारा मन और जिज्ञासु होता है और हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। आपसी सद्भाव और सहिष्णुता का भी विकास होता है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि दुर्गम मार्ग से यात्रा किया करते थे। विदेशी यात्रियों का भी भारत में आना जाना था। यूनान से मेगास्थनीज, चीन से फाहियान और व्हेनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत की संस्कृति को समझने आए। अनुभव, ज्ञान और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए यात्रा जरूरी है।
1: चलो।

हमारा तन और मन दोनों ही एक निरंतर यात्रा के पथिक हैं। ये यात्रा हमारे जन्म के साथ आरंभ होती है। हम पहली बार संसार को आश्चर्य और मासूमियत से देखते हैं, फिर युवा अवस्था की यात्रा में संवेदनाओं, सपनों और संभावनाओं का संसार हमारे सामने खुलता है। ये जीवन यात्रा का सबसे ऊर्जावान और कर्म प्रधान समय होता है। इसी समय के हमारे निर्णय, हमारा परिश्रम और हमारे कर्म ये तय करते हैं कि समाज हमें किस रूप में याद रखेगा। धीरे धीरे जीवन यात्रा आगे बढ़ती है और वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं हम, और वृद्धावस्था की यात्रा, ये यात्रा पूरे जीवन के कर्मों का प्रतिबिंब होता है, झलक होती है। अतः जीवन की इस यात्रा को, इस सफर को बड़ी खूबसूरती से सजाएं, सुमधुर और सुहाना बनाएं।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा, तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई। 4,000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में AFC अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में आज सीरिया से मुकाबला करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किर्गिस्तान में आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें रूस, ईरान और किर्गिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठकें शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह श्रद्धांजलि महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता और उनकी सार्वभौमिक स्वीकारिता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: इससे पहले उज्बेकिस्तान की 2 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उज्बेकिस्तान में भारत की संस्कृति, इतिहास, भाषाओं और विचारों के प्रति लोगों का लगातार बढ़ रहा है।

0: है। प्रधानमंत्री ने तमिल भाषा और संस्कृति में बढ़ती रुचि के साथ तिरुक्कुरल के महत्व का भी जिक्र किया।
1: सैकड़ों साल पहले तमिल भाषा में एक तिरुक्कुरल जो लिखा गया है, आज भी जीवन के सब क्षेत्रों में वो बहुत ही प्रेरणा देने वाला और अध्यात्म भी है, फिलोसॉफी है, व्यवहारु ज्ञान भी है। जब आप 80 साल मना रहे हैं तो क्या ये कल्पना कर सकते हैं कि उज्बेक में तिरुक्कुरल का यहाँ के लैंग्वेज में अनुवाद हो? सचमुच में वो यहाँ आपके ज्ञान के अंदर संवर्धन करेगा।
0: सरकार ने देश में चिप विनिर्माण तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के व्यय के साथ सेमिकॉन कार्यक्रम के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आगामी वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 10% हो सकती है। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में बड़ी भूमिका निभाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री वैष्णव ने सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का जोर भारत को वेफर निर्माण से लेकर चिप उत्पादन तक वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@AIRnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
4: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप करुण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को रोजगार देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए।
4: आप ऐसे समय में फैशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न विधाओं के स्नातक बन रहे हैं, जो भारत आत्मनिर्भरता के अनेक आयामों पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश पहले की तुलना में कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका को विस्तार दे रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 20 साल पहले महिलाओं की संख्या केवल 20% था। अभी 4000 करीब जो बच्चे यहाँ उपस्थित थे, उनमें से 85% महिलाएं हैं।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रौद्योगिकी, नवाचार और वैश्विक विनिर्माण के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है और वैश्विक कंपनियों के लिए यहाँ व्यापक अवसर हैं। एक रिपोर्ट।
5: वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। बैठक में इस बात पर विचार किया गया कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार आधारित उत्पादन का वैश्विक मंच बनता जा रहा है। श्रीमती सीतारामन ने 3M से स्थानीयकरण बढ़ाने, अनुसंधान और विकास गतिविधियों का विस्तार करने तथा नई प्रौद्योगिकियों के विकास में अधिक निवेश करने का आग्रह किया। 3M के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन ने भारत में उपलब्ध विशाल प्रतिभा संसाधन की सराहना की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
5: आज हम तेजी से बदलती रणनीतिक परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे हैं। समुद्री क्षेत्र में चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भविष्य के खतरों का सटीक अनुमान हमेशा संभव नहीं है, लेकिन संभावित खतरों के लिए तैयार रहना और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता विकसित करना आवश्यक है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि खतरा कहीं भी और कभी भी सामने आए, हम उसका समय पर प्रभावी ढंग से सामना करें।
0: इसे विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR के बाद मसौदा जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है, वे 30 सितम्बर तक Form 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवम्बर में जारी की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि इस वर्ष दिसंबर में बांग्लादेश के साथ समाप्त हो रहे 30 वर्षीय गंगा पद्मा जल बंटवारे समझौते के नवीनीकरण से पहले राज्य के हितों की तरफ ध्यान दिया जाए। राज्य सरकार ने नए समझौते में पर्यावरण संरक्षण और भविष्य की जल आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
6: नेपाल में 5 से अधिक जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचों में 900 से अधिक श्रमिकों के फंसे होने की आशंका है। भारत और अन्य देशों के विशेषज्ञों के सहयोग से बचाव दल त्रिशूली 3A सहित कई जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़ी सुरंगों में तलाश की जा रही है। तिब्बत में मृतकों की संख्या 16 हो गई है, जबकि 546 लोग लापता है। भारतीय बचाव दल चिली में और लांगटांग में पनबिजली संयंत्रों पर नेपाल की सेना के साथ मिलकर काम कर रहा है। नेपाली सेना के प्रवक्ता राजा राम बसनेट ने बताया कि अत्यधिक मलबे के कारण सुरंगों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लगभग 21,000 सुरक्षाकर्मी राहत और बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जल ग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकि नगर बैराज के सभी 36 गेट और कोसी स्थित बीरपुर बैराज के 56 में से 25 गेट खोल दिए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति ने हालात को जटिल बना दिया है। एक रिपोर्ट।
7: पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। शहडोल में बाणसागर डैम में पानी बढ़ने से कुछ समय के लिए डैम के गेट खोलने पड़े। गोरगी बांध फूटने से कई इलाकों में पानी भर गया, जबकि तेज बहाव ने रामघाट के बड़े पुल को भी नुकसान पहुंचाया। मौसम विभाग ने आज रीवा, मऊगंज, मेहर, सीधी, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। कल तक बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और सभी पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। फुटबॉल में भारत की अंडर 20 टीम आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियन कप चीन 2027 क्वालिफायर अभियान की शुरुआत सीरिया के साथ मुकाबले से करेगी। मेजबान उज्बेकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में शामिल भारतीय टीम 2006 के बाद पहली बार एएफसी अंडर 20 एशियन कप में वापसी के उद्देश्य से क्वालिफायर में उतर रही है। महिला एशिया कप 2020 क्रिकेट के ग्रुप बी मुकाबले में आज बांग्लादेश का सामना इंडोनेशिया से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में एक बड़े उलटफेर में सर्बिया के नोवाक जोकोविच पहले ही दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें अर्जेंटीना के मारियानो नावोन से हार का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481 और 2371117। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। सरकार ने सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के दूसरे चरण के सभी 6 स्तंभों को अधिसूचित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निफ्ट के विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। भारतीय नौसेना ने गोताखोरी और गहरे पानी के नीचे के अभियानों में सहायता के लिए आईएनएस निपुण को अपने बेड़े में शामिल किया। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद राहत और बचाव अभियान तेज। मृतकों की संख्या बढ़कर 903 हुई, 4000 से अधिक लोग अब भी लापता। और फुटबॉल में भारत आज ताशकंद में एएफसी अंडर 20 एशियाई कप क्वालिफाइंग अभियान में सीरिया से मुकाबला करेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है आराधना।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब सुना जाए वो गीत जिसमें आवाजें हैं मुकेश और आशा भोसले की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राजेश रोशन। फिल्म का नाम है तुम्हारी कसम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। और इस समय आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे। तो कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है अन्नदाता इस फिल्म से। गीतकार हैं योगेश, संगीतकार हैं सलील चौधरी और इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन। फिल्म का नाम है कटी पतंग।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किस्से होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम है अनुरोध। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना
2: जी,
1: वो बहुत जरूरी है। बस वो मुलाकात होती रहे ये काफी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही
1: दो
2: कहा।
1: लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने

0: साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है,
0: जी
1: तकरार होती है, तो मेल कैसे होता? अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है,
0: जी
1: विषय है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
0: और सोमवार
1: तो
0: के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल की जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप जरूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक खास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लिखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था, और बड़ी बेबाक लेखिका
0: जी
1: मानी जाती हैं। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आंखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास है पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी?
2: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था, क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
2: किशोर जी
3: जी,
2: आज तो आपकी छुट्टी है।
3: हाँ,
2: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
3: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
4: अरे भाई भीखू,
3: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट। मैं अकेले ही घूम लूंगा।
3: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रखकर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौटकर भोजन करूंगा।
3: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खिलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई रामखेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हां, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं। आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींचकर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खेलावन शरण जी, भला आपको यह क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
3: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
1: क्या?
3: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
1: अच्छा, वो क्यों भला?
3: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
3: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ,
3: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो

0: मैंने दो आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्राम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था, और उसी ट्राम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टालीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहू बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीम तल्ला भी मैं घूम आया।
1: तो
0: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी, तो पास में दो आने पैसे थे, तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर ये ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
1: अब आप जाइए,
0: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
1: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप? अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
0: किशोर जी, मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या क्या क्या आप, कोई ट्राम नहीं जाएगी है? नहीं जाएगी यहां से।
1: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
0: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी से पूछा, धर्मतल्ला यहां से कितनी दूर है?
1: होगा कोई 5 मील।
2: तो फिर आपने क्या किया?
0: किशोर जी, मैं पैदल धर्मतल्ले की तरफ रवाना हुआ। करीब 12:30 बजे मैं धर्मतल्ला पहुंचा, पूरी तरह थका हुआ था। धर्मतल्ला में कोई ट्राम नहीं मिली, इसलिए मुझे वहां से भी पैदल ही रगड़ना पड़ा। डेढ़ बजे के करीब मैं उस बड़े चौराहे पर पहुंचा। किशोर जी, आप जरा देखिए ना, 9 मील पैदल चलकर आया था, दिन भर खाना भी नहीं खाया था, प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी, और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे, बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आ ही जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका, या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
2: ओहो, ये बात है भिखू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ है। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे?
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे,
2: अच्छा
0: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
2: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
3: छह आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध
1: अंतराल के बाद।
0: भारती से। अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
1: जी ममता जी।
0: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के मन को समझें।
1: बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं, प्यार और विश्वास। ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
0: बिल्कुल। देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है। लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नजरअंदाज करना सीखिए। एक दूसरे की असहमति को समझे और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और

0: दंपति की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
1: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं, और ये बहुत जरूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीजें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहां खूबियां होती हैं वहीं कमियां सब में होती हैं। और एक चीज और है ममता जी, कि जो चीज आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
0: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोनों की जहां समझदारी होती है वहां लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग 2 का इंतजार है, देख इन्होंने सुन लिया, और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी, बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतजार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार।
1: हाँ।
0: और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वुमेन है यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीजें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना जरूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीजों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं, तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीजें है ना घर में चीजों को और क्लेश बना देती हैं।
0: मोरल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहां कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत जरूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही, चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है इसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की जरूरत पड़ती है। बात जरूरत की नहीं है, जरूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहां पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन में?
0: अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी। अच्छा।
4: तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है ना, तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
4: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है शोधा ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज्यादा रोज रोज की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत जरूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
4: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहां कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले तो शक कितना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीजें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीजों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देखरेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की जरूरत होती है पति को और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
4: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है चाहे आपके प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी जिंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
0: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत जरूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएं अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना, अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: है, किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु तो आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियां यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।

0: तो हमारी श्रोता ने लिख भेजा है, पाती शाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्योहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाए आप तो उस समय गाना जरूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुने।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

कैंडिडेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो। प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?

0: श्रोताओ, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ और देखभाल। इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो बालों की समस्या, वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा, जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है? इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
2: एक भ्रम है लोगों में।
1: अच्छा,
2: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है।
1: Okay.
2: ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता
1: है? नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
2: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
1: ओके okay.
2: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देने होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इंप्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
1: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद।
2: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: जी जी जी, ओके।
2: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
1: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
2: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
1: जी,
2: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
1: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं, इसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
2: चाहिए। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
1: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
2: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो

0: ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
1: जी,
0: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
1: झाग ज्यादा है तो अच्छा है।
0: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
1: हो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, क्या झाग वाला शैम्पू
0: आप
1: है।
0: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे, और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
1: जी
0: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
1: चला जाएगा।
0: चले जाएगा।
1: जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है?
0: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर
1: ओहो,
0: करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो,
1: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो।
0: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है, तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से, तो
1: ओके,
0: ड्राई नहीं होते हैं।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
0: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए, भले ही आप 2 मिनट के लगाओ, 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है। वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है,
1: ओके,
0: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
1: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं हाँ। डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए
0: जी।
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के ही शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
1: परंपरा
0: कितनी साइंटिफिक है,
1: साइंटिफिक है, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है
0: जी।
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से, अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने। इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहते हैं, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है, तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2 से 3 बार।
0: ओ
1: आप शैम्पू तो हफ्ते में 2 से 3 बार कर ही रहे हो। हाँ, और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है? अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
1: ये होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए
0: जी, बिल्कुल।
1: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है
0: जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए।

0: सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते हैं, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं
1: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी। बहुत बढ़िया है। अब यहां पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से,
1: वाह
0: थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैंपू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं बहुत, जो डार्क कलर्स अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था लेकिन आजकल बहुत ही, वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: या बट ये आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट?
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी।
1: आप सोचिए कि

0: नुकसान के साथ आने वाला है, तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
1: बहुत सही बात है। मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो,
0: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
1: ट्रेंड के साथ चलना,
0: ट्रेंड के साथ चलना। तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
1: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है।
0: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
1: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
0: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
1: जी, उसको रोक सकते हैं,
0: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इंप्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
1: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और अमोनिया से फ्री कलर,
0: डैमेज कम हो जाता है
1: जी,
0: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का होगा, गोल्डन होगा, तो ड्राई बहुत ज्यादा होते हैं। मेहंदी लोग इसके लिए लगाते हैं कि वो ये कलर डाई से डरते हैं, पर अगर आप देखेंगे कलर डाई इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, साइड इफेक्ट्स वाले होने वाले प्रमाण बहुत कम है।
1: बिल्कुल,
0: पर मेहंदी लगाने से ड्राइनेस काफी ज्यादा आता है बालों में।
1: तो इसमें एक फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सी चीज ठीक है,
0: अमोनिया फ्री अच्छे कंपनी का डाई
1: जी,
0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ, पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
3: तुम हाँ से हुए, ये गलत है, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
4: जी।
3: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहां मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कल्प सोरेसिस होता है। ये स्कल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
4: जी।
3: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
4: उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ,
3: तो ये स्कल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने, मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, पर रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
4: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता,
3: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
4: जी। कई शैम्पूज इस तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन है, क्या ऐसा होता है?
3: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
4: बताइए, ये शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
3: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
4: अच्छा, ऐसा
3: आपको लगता है कि अब ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी, ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगा होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे, तो आपको देखना है कि आपका स्कल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है
4: जी,
3: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
4: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना।
3: हाँ
4: है जी, ये एक थंब रूल हो गया।
3: थंब रूल मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और वह परेशान हो जाते हैं।
4: हाँ हाँ,
3: तो आपको देखना है कि आपको स्कल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
3: ये मैसेज जाना चाहिए,
4: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
3: बहुत बड़ा मुद्दा।
4: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इश्यू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लीट

0: एप्लीकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है. जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
1: सीधी सी बात है.
0: लोकल एनेस्थेशिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थेशिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है.
1: यस.
0: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया, जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार है, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं, तो आपके हाथ में बहुत सेफ है.
1: Yes.
0: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट है.
0: यस yes.
1: बिल्कुल. ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
0: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
1: जी,
0: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है हेयर ट्रांसप्लांट. और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं, वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2000, 3000, 4000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं. अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ. लोकल एनेस्थेशिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
1: जी.
0: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिप देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं, ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले. बट हेयर निकलने के टाइम रहता है 6 से 9 महीना
1: जी,
0: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
1: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं.
0: बिल्कुल ओरिजिनल
1: बालों के, पौधे को यहां से हटा के
0: वहां लगा दिया.
1: जी जी. और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
0: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है.
1: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
0: फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी,
0: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
1: जी. यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं,

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूलमेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुए कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो केरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है। और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है, तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
0: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
1: इतना सब करना पड़ता है
0: जी।
1: एलोपेशिया एरियाटा, अभी एलोपेशिया एरियाटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके पास छह साल हो जाते हैं। ये पांच छह साल इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
0: जी जी,
1: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरियाटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
0: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
1: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
0: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहां हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहां ये बात करनी जरूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करे 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करे तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं है, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना जरूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूं जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना।

0: ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
1: बिल्कुल।
0: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
1: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ। तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा वाणी।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाओं का अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी और मैं हूं आज की इस शाम की आपकी साथी नेहा नारायण सोनी। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं छोटे से मैसेज के साथ कि हर दिन हमारे सामने नए मौके, नई चुनौतियां और कुछ नया सीखने का अवसर लेकर आता है। बस ज़रूरत है सही सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाने की। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत किसी बड़े फैसले से नहीं बल्कि आज किए गए एक छोटे से अच्छे प्रयास से होती है। तो आज भी हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां होंगी युवाओं से जुड़ी जरूरी बातें, उपयोगी जानकारी, नए विचार और सुनेंगे कुछ शानदार गीत भी। दोस्तों, बात करते हैं देश के राजस्व और अर्थव्यवस्था में युवाओं के योगदान के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देश की बड़ी युवा आबादी केवल भविष्य की ताकत नहीं बल्कि आज की आर्थिक प्रगति का भी महत्वपूर्ण आधार है। युवा अपनी शिक्षा, कौशल, मेहनत और नए विचारों के माध्यम से देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। युवा जब नौकरी या व्यवसाय करते हैं तो उनकी आय से होने वाला खर्च और करों के माध्यम से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। वही युवा जब स्टार्टअप या छोटे व्यवसाय शुरू करते हैं तो वह स्वयं के साथ दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इससे उत्पादन बढ़ता है, बाजार में आर्थिक गतिविधियां तेज होती है और सरकार के राजस्व में भी अप्रत्यक्ष रूप से वृद्धि होती है। दोस्तों, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, डिजिटल तकनीक, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार जैसे क्षेत्रों में युवा नई तकनीक और नए विचारों को अपनाकर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ते दौर में युवा ऑनलाइन सेवाओं, ई कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से जुड़ी हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: है पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, इस गाने से पहले हमने बात की कि भारत की अर्थव्यवस्था में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। युवाओं का योगदान केवल नौकरी या व्यापार तक सीमित नहीं है साथियों। ईमानदारी से काम करना, स्थानीय और देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देना, कौशल विकसित करना और जिम्मेदारी से आर्थिक फैसले लेना भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। आज जरूरत है कि युवा अपने हुनर को पहचानें और उसे सही दिशा में लगाएं। सक्षम और आत्मनिर्भर युवा ही मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित भारत की नींव को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन फ्रॉड से युवाओं की सुरक्षा कैसे हो सकती है। तो आज इंटरनेट और स्मार्टफोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा यानी कि बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। पढ़ाई, ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया और मनोरंजन, लगभग हर काम डिजिटल माध्यम से हो रहा है। ऐसे में साइबर सुरक्षा को समझना युवाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। साइबर सुरक्षा का मतलब है कि अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ऑनलाइन अकाउंट और डिजिटल लेन देन को साइबर अपराधों से सुरक्षित रखना। ऑनलाइन फ्रॉड में ठग अक्सर फर्जी कॉल, SMS, ईमेल, नकली वेबसाइट, सोशल मीडिया मैसेज या लालच देने वाले ऑफर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लॉटरी। युवाओं को इनसे सावधान रहने के लिए इन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि सबसे पहले तो OTP और पिन को कभी साझा ना करें। बैंक या किसी अन्य सेवा के नाम पर कोई OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे बिल्कुल भी ना बताएं। अगला है, अनजान लिंक पर क्लिक न करें। SMS, WhatsApp या ईमेल में आए संदिग्ध लिंक को खोलने से बचें। इससे फर्जी वेबसाइट या नुकसान पहुंचने वाले सॉफ्टवेयर का खतरा हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको आगे और भी टिप्स बताऊंगी सुरक्षा के, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, यहाँ कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन फ्रॉड से युवा खुद की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि OTP और पिन को कभी किसी के साथ साझा न करें। बैंक या किसी अन्य सेवा के नाम पर कोई OTP, पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे बिल्कुल भी न बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक न करें, जैसे कि SMS, WhatsApp या ईमेल में आए संदिग्ध लिंक को खोलने से बचें। इससे फर्जी वेबसाइट या नुकसान पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का खतरा हो सकता है। अगला है मजबूत पासवर्ड रखें। अलग अलग अकाउंट के लिए अलग और मजबूत पासवर्ड इस्तेमाल करें। जहां संभव हो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू रखें। पैसे भेजने से पहले जांच करें, किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जल्दबाजी में UPI पेमेंट न करें। भुगतान से पहले नाम और रकम जरूर जांचें। अगला है फर्जी ऑफर से सावधान रहें। बहुत कम कीमत, आसान नौकरी, इनाम या अचानक मिलने वाले पैसे का लालच देने वाले संदेशों पर तुरंत भरोसा न करें। अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें, जैसे कि आधार, बैंक विवरण, पासवर्ड और अन्य निजी जानकारी सोशल मीडिया या अनजान लोगों के साथ साझा न करें। धोखाधड़ी होने पर तुरंत कार्रवाई करें। अगर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत अपने बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को सूचित करें और भारत में 1930 साइबर हेल्पलाइन या नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। याद रखें साथियों, साइबर सुरक्षा में सबसे बड़ा हथियार सावधानी है। ऑनलाइन दुनिया में एक छोटी सी लापरवाही आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, इसीलिए सोचें, जांचें और फिर क्लिक करें। यहां लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये शानदार सा गीत।

0: की रोज की दौड़ में हम अक्सर चीजें भूल जाते हैं, पर अच्छा लगता है जब कोई आपका ख्याल रखता है, जैसे कि RBI ख्याल रखता है आपके अनक्लेम डिपॉजिट का।
1: अनक्लेम डिपॉजिट्स मतलब वो बैंक खाते जिसमें 10 साल या उससे अधिक से कोई लेन देन नहीं हुआ हो, ऐसे खाते RBI के DEA फंड में चले जाते हैं। अपने बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपनी KYC अपडेट कराइए और अपना अनक्लेम डिपॉजिट वापस पाइए।
0: RBI कहता है, जानकार बनिए,
1: सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, अब बातें करते हैं कुछ खेल जगत की। तो महिला क्रिकेट टीम की बात करते हैं, तो भारत ने महिला एशिया कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में थाईलैंड को 94 रन से हराया। शेफाली वर्मा ने शानदार 64 रन बनाए। बात करेंगे स्क्वाश की, तो भारतीय खिलाड़ी अभय सिंह ने अपना 13वां PSA टूर खिताब जीतकर शानदार उपलब्धि हासिल की। बात करते हैं फुटबॉल की, तो भारतीय फुटबॉल के पुरस्कार समारोह में लिलियाना जोंग छांगते और मनीषा कल्याण को प्रमुख सम्मान मिला। बात करेंगे हॉकी की, तो महिला हॉकी विश्व कप में 5वां स्थान हासिल करने वाली भारतीय टीम को हॉकी इंडिया ने 50 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। और बात करते हैं आगे की तैयारी की, तो भारतीय महिला टीम अब एशिया कप में अपने अगले मुकाबलों के लिए तैयार है, जबकि भारतीय क्रिकेट टीम के आगामी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर भी नजर बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये शानदार सा गीत।

दोस्तों, इसी शानदार गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी आपकी इस शाम के साथ ही आपसे लेती हूँ विदा। मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 5:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

0: हर सुबह नया सबक सिखाती है, हर शाम हमें कुछ याद दिलाती है। ज़िंदगी चलती है अपने सफ़र पर, हर मंजिल हमें कुछ और सिखाती है। जी हाँ, नमस्कार, आदाब सखियों, मैं रईसा महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का दिली खैर मकदम करती हूँ। प्यारी सखियों, भारतीय संस्कृति में कहा गया है, अतिथि देवो भव, यानी मेहमान भगवान के समान होता है। पर सच कहें तो बिना बताए अचानक मेहमान दरवाजे पर आ जाएं तो थोड़ी घबराहट तो होती ही है। घर बिखरा हुआ है, किचन में कुछ बना नहीं है और हम खुद भी तैयार नहीं। ऐसे में घबराने की नहीं, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। सबसे पहले मुस्कान के साथ स्वागत करें। आपका चेहरा ही आपका स्वागत है। चाहे आप कितने भी बिजी हों, दरवाजा हमेशा मुस्कुरा कर खोलें। मेहमान को कभी भी ये महसूस मत होने दें कि उनके आने से आप परेशान है। जरा ये कहिए, अरे आइए आइए, बहुत अच्छा किया आप आ गए। इतना कहने से ही आधा काम हो जाता है। उन्हें बैठने के लिए सबसे साफ और हवादार जगह दें। मेहमान के बैठते ही आपको सखियों 5 मिनट का टाइम मिल जाता है, इसी में जादू दिखाना है। बेडरूम में बिखरे कपड़े उठाकर एक टोकरी में डाल दें और टोकरी को अलमारी में रख दें। ड्राइंग रूम की चादर ठीक कर दें, कुशन सही लगा दें और हाँ, एक अच्छी से अगरबत्ती या रूम फ्रेशनर लगा दें और पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। देखिए प्यारी सखियों, अचानक आए मेहमान के लिए 5 स्टार वाला खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है। सम्मान जरूरी है, दिखावा नहीं। तुरंत के लिए 3 आइडिया हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, भुजिया, ये तो हर घर में ही रहता है, उसे एक सुंदर प्लेट में सजा कर उन्हें सर्व करें। अगर ब्रेड है तो 5 मिनट में ब्रेड पकौड़ा या सैंडविच बना सकती हैं। तो सखियों, ऐसे कुछ और भी आइडियाज हैं जिनका जिक्र करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
0: ब्रेक से पहले हमने चर्चा की थी कि अचानक आए मेहमान का स्वागत कैसे करें। इसमें दूसरा तरीका है सखियों, शरबत। गर्मी का मौसम है तो नींबू पानी, आम पन्ना या शिकंजी सबसे बेस्ट है। इज्जत भी बनी रहती है और पेट भी ठंडा। सखियों, अगर मेहमान खाने के समय पर आए तो सब्जी घर में है उसी में थोड़े से पनीर या मटर डालकर सब्जी को स्पेशल बना दे। दाल में तड़का लगा दे, चावल के साथ जीरा डाल दे। थोड़ी सी कोशिश से रोज का खाना भी शाही लगता है। एक जरूरी टिप सखियों, किचन में अकेले मत लगे रहें। मेहमान को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता, बीच बीच में आकर बात करते रहें। याद रखिए सखियों, मेहमान खाने से ज्यादा आपके व्यवहार को याद रखता है। इस प्रकार से सखियों, अचानक मेहमान का आना परीक्षा नहीं, एक अवसर है अपने रिश्तों को मजबूत करने का, अपने संस्कार दिखाने का। घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई। अगर दिल से प्यार और चेहरे पर मुस्कान है तो रूखी सूखी रोटी भी मेहमान को 56 भोग बराबर लगेगी। तो इस प्रकार से सखियों, ये चर्चा हुई अचानक आए मेहमान का स्वागत कैसे करें पर। अब बातों को देते हैं विराम और सुनते हैं आई हैड लव स्टोरीज का ये गीत।

0: प्यारी सखियों, अभी आप सुन रहे थे आई हेट लव स्टोरीज का ये गीत। कहा जाता है सखियों कि जिस देश में महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं वो देश कभी गरीब नहीं रह सकता। भारत की अर्थव्यवस्था में असली ताकत हमारे घरों में बैठी हम महिलाएं ही हैं। पहले माना जाता था कि महिलाएं सिर्फ घर संभालती हैं, पर आज हकीकत बदल गई है। आज महिला सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की लक्ष्मी बन गई है, और इसकी सबसे बड़ी ताकत है बचत, निवेश और स्वयं सहायता समूह। सखी, दो तरीके से महिलाएं भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं। प्रत्यक्ष योगदान, जैसे नौकरी, व्यापार, खेती या दुकान चलाना। अप्रत्यक्ष योगदान, घर के पैसे बचाना, उसे सही जगह लगाना, ये सबसे बड़ा योगदान है। एक पुरुष जो पैसे कमाता है, लेकिन एक महिला उन्हीं पैसों को बचाकर उसे दौलत बनाती है। तो सखियों, इस संबंध में हम आपसे और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी लेंगे कमर्शियल ब्रेक।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: ब्रेक के बाद महिला जगत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्यारी सखियों, ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। सखियों, किसी देश की अर्थव्यवस्था में बचत हर अर्थव्यवस्था की पहली सीढ़ी है। बचत का मतलब है आय में से भविष्य के लिए कुछ हिस्सा निकाल कर रखना। महिलाओं की बचत की आदत ही भारतीय बैंकों की ताकत है। हमारी दादी नानी आटे के डिब्बे में पैसे बचाती थी, और आज की महिला उसी पैसे को बैंक, पोस्ट ऑफिस और जन धन खाते में जमा कराती है। इन छोटी छोटी बचत से देश को बहुत फायदा होता है। बैंकों के पास पैसा आता है जिससे बैंक किसान और व्यापारियों को लोन दे पाते हैं। परिवार पर कर्ज का बोझ नहीं पड़ता। मुश्किल समय पर सरकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बूंद बूंद से घड़ा भरता है सखियों, वैसे ही महिलाओं की छोटी छोटी बचत से देश का बड़ा खजाना बनता है। सिर्फ बचत करना ही काफी नहीं है, इसे बढ़ाना भी जरूरी है। इसी को निवेश कहते हैं, सोना चांदी में निवेश, जो हर भारतीय महिला की परंपरा है और संकट में काम भी आती है। LIC और बीमा परिवार की सुरक्षा के लिए है। इसके अलावा सखियों, देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी का सबसे शानदार उदाहरण है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। आखिर क्या है ये? दरअसल सखियों, 10 से 20 महिलाओं का एक समूह जो हर हफ्ते या महीने 50 से 100 रुपए जमा करती हैं। जब एक अच्छी रकम जमा हो जाती है तो उसी में से एक दूसरे को छोटे छोटे लोन देती है, इससे रोजगार बढ़ता है। आज स्वयं सहायता समूह की वजह से महिलाएं अचार, पापड़, अगरबत्ती, कपड़े, टिफिन सर्विस बनाकर ये बेचती हैं। इससे वे नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन रही हैं। इस तरीके से सखियों, देश की अर्थव्यवस्था तब तक पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसमें महिलाओं की पूरी भागीदारी ना हो। इसलिए सखियों, ये चर्चा हुई देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। अब सुनते हैं आशिकी 2 का यह नगमा।

अभी आप सुन रहे थे आशिकी टू का श्रेया घोषाल की आवाज़ में एक गीत प्यारी सखियों। पकोड़ा भारत का एक ऐसा लोकप्रिय स्नैक जिसका नाम तो एक ही है लेकिन पूरे देश में इसके रूप स्वाद बनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। इसी वजह से कहा जाता है पकोड़ा नाम एक रूप अनेक। सबसे पहले बात करते हैं सखियों उत्तर भारत के मशहूर पकोड़ा की, तो इसमें सबसे पहले आता है कांदा भजिया यानी प्याज के पकोड़े। कटे हुए प्याज और बेसन को मिलाकर बनाए जाने वाले कुरकुरे पकोड़े जो बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। फिर बात आती है आलू गोभी के पकोड़े की, तो उबले आलू और फूल गोभी के टुकड़ों को बेसन के घोल में डुबोकर डीप फ्राई किया जाता है। पनीर पकोड़ा, पनीर के टुकड़ों के बीच में हरी चटनी या चाट मसाला भरकर बेसन में लपेटकर इसे तला जाता है और ये शादी और पार्टियों की तो जान है। अब बात करते हैं दक्षिण के मेदू बड़ा की। हालांकि ये बड़ा है लेकिन उड़द दाल के इस कुरकुरे स्नैक को भी पकौड़ी की ही प्रजाति में माना जाता है। इसके अलावा पश्चिम और पूर्वी भारत का स्वाद बटाटा वड़ा, उबले आलू के मसालेदार घोल को बेसन में डुबोकर तला जाता है। जब इसे ब्रेड के साथ परोसा जाता है तो यह वड़ा पाव बन जाता है। अब सबसे खास अपने राजस्थान का मिर्ची वड़ा, बड़ी और कम तीखी हरी मिर्च के अंदर आलू का मसाला भरकर बेसन के घोल में इसे तलते हैं। जोधपुर का मिर्ची वड़ा तो पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से सखियों ये बातें हुई पकोड़ा एक पर रूप अनेक के बारे में। अब कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सुनते हैं मोहब्बते फिल्म का ये गीत।

इसी के साथ सखियों समय हो गया है आपको गुड बाय कहने का, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहेंगे कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रईसा को, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। शाम के 6 बजने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की

0: समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोफ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को भरोसा है कि आने वाले दशकों में भारत बड़े निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा। इसका प्रमाण हमें सेमिकॉन 1 के तहत मंजूर की गई परियोजनाओं से मिलता है। इनमें कई इकाइयों ने भूमि पूजन के केवल 13 महीने के भीतर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया है। इसी तेज गति ने वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग का भारत पर भरोसा और मजबूत किया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है। 4,247 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। सभी 8 प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेजी से जारी है। इस बीच नेपाल में भीषण बाढ़ और जलग्रहण क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिहार में गंडक और कोसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि पिछले 24 घंटों में दोनों नदियों के जलस्तर में कमी आई है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियन कप 2027 के क्वालिफायर में भारतीय अंडर 20 पुरुष टीम और सीरिया के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीम गोल रहित बराबरी पर थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की यह है पहली पेशकश। फिल्म का नाम लव स्टोरी। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की।

ये गाना आपने अभी आपने सुना, हमने लिया था फिल्म ईमानदार से, आवाज़ थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की, और यह है अगला गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम राजपूत।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। शाम के 6:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर। माटी के स्वर कार्यक्रम की यह है पहली पेशकश। आवाज चित्रा पांचाल की।

0: नमस्कार, क्या आप अपने बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सनातन संस्कृति और उत्कृष्ट शिक्षा देना चाहते हैं? तो आइए सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़ में, राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को समर्पित एक प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्र, जहां कक्षा 6 से लेकर आचार्य स्तरीय और शिक्षा शास्त्री यानी BEd की भी श्रेष्ठ व्यवस्था है। प्रवेश प्रारंभ है, आज ही संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।
1: यह है माटी का स्वर कार्यक्रम की अगली पेशकश, आवाज गौरी शंकर की है।

0: माटिस स्वर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे एफएमएडिक्स 103.7 मेगाहर्ट्स पर, आकाशवाणी नागौर का ये चिन्मय चैनल है। शाम के 24:30 होने को हैं। कुछ बोले आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और उसके पश्चात राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: यूपीआई के 10 आत्मनिर्भर बेफिक्र।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8%। राज्य में 309 नगर निकायों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा। 21,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी, 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की जीडीपी में 7.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास की रफ्तार बरकरार रख उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के लिए जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। ये आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य अनुमानों से काफी बेहतर रहे हैं। मजबूत घरेलू खपत, सरकारी पूंजीगत व्यय, मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र और रियल एस्टेट ने इस बढ़ोतरी को बनाए रखने में मदद की है। प्रदेश में 309 नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया आज पूरी हुई। अंतिम दिन तेज सरगर्मियां रहीं। नामांकन केंद्रों पर दिन भर गहमा गहमी बनी रही। विभिन्न नगर निकायों में बड़ी संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थक नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सुबह 10 बजे से शुरू हुआ नामांकन पत्र भरने का सिलसिला दोपहर 3 बजे तक चला। कुछ स्थानों पर प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए नाम निर्देशन पत्र पेश करने पहुंचे। भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने कुछ वार्डों में उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की और सीधे अपने प्रत्याशियों को सिंबल सौंपे। कुछ स्थानों पर टिकट वितरण को लेकर दावेदारों में नाराजगी और विरोध भी देखा गया। विभिन्न पार्टियों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों में भी नामांकन दाखिल करने को लेकर उत्साह रहा। 10,245 वार्डों के लिए करीब 21,000 से अधिक प्रत्याशियों ने लगभग 26,500 से ज्यादा नामांकन भरे हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। वहीं 3 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। निकाय चुनावों के लिए 2 चरणों में 9 और 11 सितंबर को मतदान होगा। 14 सितंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस बीच निकाय चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान की सक्रियता बनी हुई है। विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आमजन को मतदान के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। साथ ही बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष मतदान करने की अपील की जा रही है। रैली, रंगोली और विभिन्न सम्मेलनों के माध्यम से मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने का संदेश दिया जा रहा है। राजस्थान पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम से सावधान रहने की अपील की है। पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह ने बताया कि इसमें अपराधी सोशल मीडिया के जरिए लोगों की जानकारी जुटाते हैं और विभिन्न संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी बनकर उनके कर्मचारियों से ठगी करने का प्रयास करते हैं। पुलिस ने किसी भी वित्तीय लेनदेन और डेटा संबंधी पुष्टि के लिए मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम लागू करने की अपील की है। इस बीच डीग में ऑपरेशन काउंटडाउन के तहत एक संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में दिल्ली के साइबर ठगों का खुलासा किया गया है। डीग पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ ने बताया कि आरोपी लोगों को बैंक क्रेडिट कार्ड दिलाने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दे रहे थे।

0: जो आईडीज है एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को, वो भेजकर और फर्जी कॉल कर लोगों के साथ जो है वो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के संबंध में फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरह की एक जो शिकायत साइबर थाने में दर्ज थी। अनुसंधान आगे बढ़ा तो ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली में उत्तम नगर थाना इलाके में एक 3 मंजिल जो है वो बिल्डिंग है, उसमें इसी तरह से संगठित होकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। कुल इसमें 64 जो है वो गिरफ्तार किए गए और 2 जो है माइनर इनको बाद में रेस्क्यू करके जो है वो CWSU भेज दिया गया, और साथ में इसमें शामिल जो मेन इनका कोर ग्रुप है उसके 8 मेंबर को जो है बाद में रिमांड पे लाया गया।
1: प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विभिन्न प्रतिष्ठानों और गोदामों पर छापेमारी कर खाने पीने की चीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। खराब और अवधि पार सामग्री मिलने पर उसे नष्ट भी करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर पहुंचे जयपुर के केंद्रीय दल ने बीछवाल क्षेत्र में एक गोदाम को सीज किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इस गोदाम से मिठाइयों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। सिरोही जिले में रेवदर के पास आज एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अनादरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार दुर्घटना कांडला हाईवे पर होलागरा के पास कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से हुई। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। 2 दिन की इस यात्रा में श्री मोदी ने आज राष्ट्रपति सादोर जापरोफ के साथ बैठक की। श्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से भी मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। पश्चिम एशिया के हालिये घटनाक्रम को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के निरंतर प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रक्षा, अर्थव्यवस्था और तकनीक सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर वार्ता की। श्री मोदी ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के बिश्केक पहुंचने पर भारतीय समुदाय की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने देशभर के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में मौजूद एथेनॉल की सटीक मात्रा अनिवार्य रूप से बताने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। अधिवक्ता नरेंद्र गोस्वामी की ओर से दायर की गई इस याचिका में एथेनॉल मिश्रित ईंधन के वाहनों के इस्तेमाल की अनुकूलता के बारे में अधिक पारदर्शिता के निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें अपनी शिकायत लेकर संबंधित उच्च न्यायालय जाने की छूट दी। याचिका में मांग की गई थी कि हर पेट्रोल पंप के हर नोजल पर एथेनॉल का प्रतिशत अंकित होना चाहिए, साथ ही पेट्रोल पंप से मिली रसीद पर भी एथेनॉल का प्रतिशत लिखा जाना चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सरकार E20 पेट्रोल की उपयुक्तता को लेकर वाहनवार आधिकारिक सूची बनाए। इसके अलावा जो पुराने वाहन E20 उपयुक्त नहीं हैं, उनके लिए बदलाव की ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे उन्हें कम इथेनॉल वाला पेट्रोल उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि वस्त्र और परिधान क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के साथ ही लाखों लोगों को आजीविका भी देता है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से विरासत और मूल्यों से जुड़े रहते हुए वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं।
2: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो, लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि फैशन उद्योग में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प में युवाओं से योगदान देने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं देने वाला बनने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी हुई हैं और 3 सितंबर से बारिश का नया दौर शुरू होने की संभावना है। हालांकि उदयपुर संभाग सहित कुछ स्थानों पर छुटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 4 से 7 सितंबर के दौरान भरतपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में गरज के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस दौरान कोटा संभाग और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मध्यम से तेज और भारी बरसात की भी संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में अगले कुछ दिन मॉनसून की परिस्थितियां कमजोर रहने के आसार हैं। बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। जल संसाधन विभाग के अनुसार प्रदेश में इस सीजन में अब तक करीब 18% कम बारिश हुई है। 362 मिलीमीटर सामान्य बरसात के मुकाबले अब तक 295 मिलीमीटर पानी बरसा है। राजधानी जयपुर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर और उदयपुर सहित 19 जिले कम बारिश वाले स्थानों में शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में GDP वृद्धि दर 7.8%। राज्य में 309 नगर निकायों में होने वाले चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम पूरा। 21,000 से अधिक उम्मीदवार मैदान में। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी के नए तरीके बॉस स्कैम को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील की। और प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां फिलहाल थमी, 19 जिलों में अब तक सामान्य से कम पानी बरसा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख तैयार किया है नीलिमा दादीच ने। अजमेर जिले में बीते दिनों शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल से जुड़े कार्यक्रमों के साथ ही धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन हुआ। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हलचल रही। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य विभाग ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गतिविधियां संचालित की। जिले में नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन होने के चलते आज नामांकन स्थलों पर गहमा गहमी का माहौल रहा। इससे पहले प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य दलों के कार्यालयों में टिकट लेने की लोगों में होड़ रही। प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन आज सुबह तक भी जारी था। चुनाव कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्रों की जांच 1 सितंबर को होगी, जबकि उम्मीदवार 3 सितंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 4 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में 9 सितंबर को और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 14 सितंबर को होगी। इस बीच मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए जिले में स्वीप गतिविधियां जारी हैं। विभिन्न नवाचारों के जरिए लोगों में मतदान के महत्व के बारे में जागरूकता लाई जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र की यदि बात करें तो राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर को अंगदान जागरूकता, ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान, अंगदान समन्वय और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ये सम्मान जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रदान किया गया। जिले में पिछले दिनों मौसम का मिला जुला मिजाज देखने को मिला, कभी बारिश तो कभी लंबे अंतराल की

0: चलते उमस और गर्मी का असर रहा। इस बीच मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग सजग रहा। विभाग ने स्वास्थ्य दल आपके द्वार अभियान चलाया। शहरी क्षेत्र में 1070 आशा सहयोगिनियों और स्वास्थ्य अधिकारियों ने घर घर जाकर कूलर, पानी की टंकियों और जमा पानी की जांच की। मच्छर और लार्वा को नष्ट करने की कार्रवाई की गई और बुखार, डेंगू तथा मलेरिया के संभावित मरीजों की पहचान कर उपचार की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम हुए। केंद्रीय विश्वविद्यालय बांदर सिंदरी में माय भारत नेशनल स्पोर्ट्स डे युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में युवाओं को खेल और फिटनेस के प्रति जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विद्यार्थियों को संबोधित किया और उनसे संवाद किया। प्रधानमंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी का संदेश दिया। इसी क्रम में किक द ड्रग्स पिक द स्पोर्ट्स थीम पर निजी कॉलेज में कार्यक्रम रखा गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी का सम्मान भविष्य को प्रोत्साहन थीम के साथ हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन, नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं, शिक्षण संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों की ओर से तिरंगा रैली, प्रभात फेरी और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह पुलिस लाइन मैदान में हुआ। इसमें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। उन्होंने झंडा रोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले 87 लोगों को सम्मानित किया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और आमजन शामिल हुए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली और तकनीकी नवाचारों को देखने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य डॉक्टर ए के वर्मा ने अजमेर स्थित परिसर का दौरा किया। उन्होंने आयोग के विभिन्न अनुभागों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग और स्कैनिंग प्रक्रिया का भी अवलोकन किया। अब बात धार्मिक आयोजनों की। सावन माह के दौरान तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धालुओं की आवाजाही रही। श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर से जल लेकर विभिन्न शिवालयों में अभिषेक किया और पूजा अर्चना की। जिले के अन्य शिव मंदिरों में भी सावन के दौरान धार्मिक कार्यक्रम रखे गए। सावन के चारों सोमवारों पर जिले के शिवालयों में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने विशेष पूजन किया। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, दुनिया में अनिश्चितता रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था रो उम्मीद बेहतर प्रदर्शन। चालू माली साल रा पहला 3 महीना माय जीडीपी री बढ़ोतरी रेट 7.8%। कजरा 309 नगर निकाय माय भेवन वाला चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम पूरो भयो। 21,000 बत्ता उम्मीदवार पर्चा भरिया। राजस्थान पुलिस साइबर ठगीरा नुआ तरीका बॉस स्कैम सावचेत रहवन री अरज कीनी। प्रदेश माय चौमासारी बिरखा मंदी। 19 जिला माय हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। चालू माली साल री पहली तिमाही माय देश री जीडीपी माय 7.8% री बढ़ोतरी भी है। लारला माली साल री इनी मियाद माय आ रेट 6.9% ही। दुनिया री माली चुनौतियां रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था माय विकास री रफ्तार बरकरार राखर उम्मीद बेहतर रही। चालू माली साल री पहली तिमाही माय नॉमिनल जीडीपी माय 10.3% री बढ़ोतरी भी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय आज चालू माली साल माय अप्रैल उन जून महीना ताई सारू जीडीपी रा तिमाही अनुमान जारी कीना। प्रदेश माय आवता महीना भेवन वाला 309 नगर निकाय रा चुनाव सारू पर्चा दाखिल करन रो काम आज पूरो भे गयो। नाम पाना दाखिल करण रा आखिरी दिन आज नामांकन केंद्र मा थे। मोटी तादाद माए उम्मीदवार

0: वारा हिमायतियां सागे पर्चा दाखिल करन सा रूप उग्या। सवारे 10 बजा सरूफियो नाम पाना दाखिल करन रो सिलसिलो दोपहर पाछे 3 बजा ताई चालियो। कठे कठे उम्मीदवार आप आपरा समर्थकां सागे ढोल नगाड़ा बजाता थका नाम निर्देशन पत्र पेश करन सा रूप उग्या। भाजपा और कांग्रेस दोनों खास पार्टियां कुछ वार्डा माए उम्मीदवारां री लिस्ट जारी नी कीनी और सीधा ही उम्मीदवारां ने चुनाव चिन्ह सौंपिया। कठे कठे टिकट रा बंटवारा न लेर दावेदारा माए नाराजगी नजर आई। न्यारी न्यारी पार्टियां रा उम्मीदवारा सागे निर्दलीय उम्मीदवारा माए नाम पाना दाखिल करन रो माव रहो। 10,245 वार्डा सारू 21,000 उम्मीदवार 26,000 पर्चा दाखिल कीना। नाम पाना री काल जांच करी जावेला। नाम 3 सितंबर ताई पाछा लिया जा सकेला। निकाय चुनाव सारू 9 और 11 सितंबर न वोट पड़ेला। वोटारी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। इन बीच निकाय चुनाव माए जनतारी भागीदारी बधावन सारू भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। वोट देवन वालाओं रैली रंगोली और न्यारा न्यारा सम्मेलना रे जरिए लोकतंत्र रा महापर्व माए भागीदारी निभावन री अपील करन सा गई। बिना लोभ करिया सोच समझ हर वोट देवन री अरज करी जा रही है। राजस्थान पुलिस जनताओं साइबर ठगी रा नुआ तरीका बॉस स्कैम सावचेत रहवन सारू चेतायो है। पुलिस रा अतिरिक्त महानिदेशक वीके सिंह बतायो का इन तरीका माए अपराधी सोशल मीडिया रे जरिए लोगों ने जानकारी हासिल कर और न्यारा न्यारा संस्थाना रा आला अहलकार बन और ठगी करन री कोशिश करे है। पुलिस किनी माली लेन देन और डेटा संबंधी पुष्टि सारू मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम लागू करन री अपील कीनी है। इन बीच डीग माए ऑपरेशन काउंट डाउन रातेत दिल्ली पुलिस री मदद एक संगठित साइबर अपराध सिंडिकेट रो पर्दाफाश करी चियो है। डीगरा एसपी कामले शरण गोपीनाथ बतायो का आरोपित लोगों ने बैंक रा क्रेडिट कार्ड दिरावन रो झांसो देर ठगी कर रहा है।
1: जो आईडीज है एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय को वो भेजकर और फर्जी कॉल कर लोगों के साथ जो है वो एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड के संबंध में फ्रॉड किया जा रहा है। इस तरह की एक जो शिकायत साइबर थाने में दर्ज थी। अनुसंधान आगे बढ़ा तो ये पता चला कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली में उत्तम नगर थाना इलाके में एक 3 मंजिल जो है वो बिल्डिंग है उसमें इसी तरह से संगठित होकर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। कुल इसमें 64 जो है वो गिरफ्तार किए गए और 2 जो है माइनर इनको बाद में रेस्क्यू करके जो है वो CWSU भेज दिया गया और साथ में इसमें शामिल जो मेन इनका कोर ग्रुप है उसके 8 मेंबर को जो है बाद में रिमांड पे लाया गया।
0: प्रदेश माए खान पीन री चीजा माए मिलावट खोरी रे खिलाफ लगातार कार्रवाई करी जा रही है। इन सारू न्यारा न्यारा प्रतिष्ठान और गोदामा माथा छापा मार और खान पीन री चीजा रा नमूना लिया जा रहा है। खराब और मियाद पार सामग्री मिलन पर वाना खत्म कराई जा रही है। जयपुर रो केंद्रीय दल बीकानेर रा बीछवाल हल्का माए एक गोदाम ने सीज कर दिनो। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बतायो कि ई गोदाम मिठाइयां रा नमूना लेर जांच सारू प्रयोगशाला माए भेजी गया है। सिरोही जिला रा रेवदर हल्का माए कांडला हाईवे माथे होला ग्राहक ने कार और मोटरसाइकिल री टक्कर रे कारण 3 जना री मौत वे की और 2 जना घना जख्मी वे क्या। जख्मी लोगों ने अनादरा रा अस्पताल माए भर्ती कराई गया है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल हुए वनसारू आज किर्गिस्तान री राजधानी बिश्केक पुग्या। 2 दिन रा ई दौरा राते श्री मोदी आज वठेरा राष्ट्रपति सादोर जापारोफ सागे मीटिंग कीनी। श्री मोदी ईरान रा राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन सागे मुलाकात कीनी। आतुनी एशिया माए लाडला दिना उपजा हालात रा बारा माए प्रधानमंत्री कहो का सगला मुद्दा ने बातचीत और कूटनीति रे जरिए सुलझाया जावना चाहिए। श्री मोदी ई हल्का माए शांति और थरता ते करण सारू लगातार कोशिशां री जरूरत माथे जोर दिनो। इनु पहली प्रधानमंत्री मोदी बिश्केक माए आर्मीनिया रा प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान सागे मुलाकात कर और हिफाजत माली व्यवस्था और तकनीक समेत न्यारा न्यारा हलका माए मदद रे बारा माए चर्चा कीनी। श्री मोदी बिश्केक माए महात्मा गांधी स्मारक जार वठे फूल चढ़ार बापू ने श्रद्धा भाव सागे याद कीना। प्रधानमंत्री रे बिश्केक पुगण पना वठे बछोड़ा।

0: न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले री पीठ अर्जी माथे सुनवाई उन नटता थका वकील ने शिकायत संबंधित हाईकोर्ट में दायर करन री छूट दीनी। अर्जी माए पेट्रोल पंप रा हर नोजल माथे और पेट्रोल पंप मिली रसीद माथे एथेनॉल रो प्रतिशत मानदंड रियरज करी ची ही। अर्जी माए सरकार हुई E20 पेट्रोल री उपयुक्तता रा बारा माए वाहन वार आधिकारिक सूची जारी करन री मांग करी ची ही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो है कि कपड़ा हलको भारत री सांस्कृतिक विरासत रो खास हिस्सो वेवनसा गई लाखां लोगां री काम कमाई रो जरियो है। वह राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट रा दीक्षांत समारोह में बोल रही ही। राष्ट्रपति विद्यार्थियों विरासत और मूल्यों जुड़िया रह वैश्विक नजरियो अपनावन सारू कहो। वह कहो कि फैशन और वस्त्र प्रौद्योगिकी रा हलका माए भारत री दुनिया माए मौजूदगी बधावन दी घनी संभावनावां है।
1: फैशन टेक्नोलॉजी भी ऐसा क्षेत्र है जिसमें विश्व स्तर पर भारत की भूमिका बढ़ाने को अपार संभावना है। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस प्रयास में आप प्रण रखें कि आपकी सोच वैश्विक हो लेकिन आपकी जड़ें अपने मिट्टी की विशिष्टता और जीवन मूल्यों से जुड़े। इस तरह आप न केवल सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन में भी अपना योगदान दे सकेंगे।
0: प्रदेश में चौमासारी बिरखा मंदी पड़बा सागे। अब 3 सितंबर नु बारिश रो नुओ दौर शुरू होवन रा आसार है। मौसम विभाग ने मुजब 4 और 7 सितंबर बीच भरतपुर कोटा जयपुर अजमेर और उदयपुर संभाग में गरज सागे बिरखा वेवन की संभावना है। इन दौरान कोटा संभाग और आरएसआर रा हल्का माए कठे कठे जोरदार मह बरसबारा आसार है। दूजी गानी राज्य रा आतुणी हल्का माए आवता कुछ और दिन बिरखा मंदी रहवन री संभावना है। प्रदेश रा आतुणी हल्का रा बीकानेर संभाग और उगनी राजस्थान रा शेखावाटी हल्का कठे कठे बिरखा वह सके है। जल संसाधन विभाग रे मुजब राज्य माए चौमासारी ई रुत्र दौरान हाल ताई सामान्य करीब 18% कम में बरसियो है। 362 मिलीमीटर सामान्य बरसात रे मुकाबले हाल ताई 295 मिलीमीटर बिरखा भी है। राजधानी जयपुर बांसवाड़ा बारां भीलवाड़ा बूंदी सवाई माधोपुर जैसलमेर और उदयपुर समेत 19 जिला माए कम बारिश हुई है। सिर्फ डीग और फलौदी माए सामान्य बत्तों में बरसियो है जबकि अजमेर अलवर भरतपुर चूरू बाड़मेर और बीकानेर समेत 20 जिला माए हाल ताई सामान्य बरसात हुई है। प्रदेश में आज कजली तीज रो त्योहार मनायो जा रियो है। ये मौके महिलावां व्रत राख और पूजा अर्चना कर रही है। सिरोही समेत न्यारा न्यारा जिला रा गांव आई हल्का माए खास उमाव नजर आ रियो है। अजमेर माई सातुड़ी तीज रे मौके सुहागिना 16 श्रृंगार कर और तीज माथेरी पूजा करिया पाछे सातु खार व्रत खोल लेला। आखिर माए खास समाचार एक और फिर सुन ले रहा। दुनिया में अनिश्चितता रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था रो उम्मीद बेहतर प्रदर्शन। चालू माली साल रा पहला

0: पूरो थियो। 21,000 बत्ता उम्मीदवार नाम पाना दाखिल कीना। राजस्थान पुलिस साइबर ठगीरा नुआ तरीका बॉस स्कैम मूसा उचेत रेवंडी अरज कीनी। हर प्रदेश माए चौमासारी बिरखा मंदी। 19 जिला माए हाल ताई सामान्य कम पानी बरसियो। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: चारा और नागौर में जमा किसी दिशा में तो बरकारी भारी कमी है और फसल ने भी काफ़ी नुकसान हो रही है, फसलां बल रही है, लेकिन अब देखो ईश्वर है, नेपाल में तो बाढ़ आ रही है, आपने तो कमी है। बन उम्मीद करां कि एक दो दिन में बरसात आगे जार का इंटा हो सके, दो तारीख पचे अड़ी की संभावना बन रही है। और भया चौपाल में तो आवा जना नित्य नुई अथाई क्रिया करा हाँ, और आजकल हर क्षेत्र में अगर आधुनिक समय में बात करा तो कई तरह री बताऊंगी, तो मई नई नई तकनीक आ गई, तो आपनों जो को कृषि है विभाग ईरमाई भी कई तकनीक आई है, जकि रमाई एक है डिजिटल कृषि भी बारे में आज आप कराला अथावड़ी के डिजिटल कृषि का ही है के भारत में कृषि री जकी डिजिटल तकनीक है सटीक खेती जके ना पाके वहाँ प्रिसिशन फार्मिंग या रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एआई आधारित डेटा एनालिटिक्स के द्वारा एक नई दिशा मिल रही है। कृषि क्षेत्र में हो रिया परिवर्तन ने गति देनी और किसान की सहायता रह लिए भारत सरकार हूँ डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 री शुरुआत करी जी है। इरो उद्देश्य भारतीय किसानों ने डिजिटल रूप में सशक्त बनानो और कृषि मूल्य श्रृंखला में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार करना है। क्या डिजिटल कृषि है कहीं? डिजिटल कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न डिजिटल तकनीकों का उपयोग करी जाए ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि और स्थिरता लाई जा सके। जखेरे अंतर्गत आने वाली प्रमुख तकनीक है सटीक खेती। यह तकनीकी कृषि कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डेटा का उपयोग करती है, स्मार्ट सेंसर्स ये कृषि प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे मिट्टी की नमी, तापमान आदि की निगरानी करने में मदद करती है, या बिग डेटा एनालिटिक्स जकी कहीं करे ये बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने के लिए उपयोग करी जाए जैसे में कृषि की भविष्यवाणी और सुधार का ही है बोइंग माई में। एक और वह जकी वह भू स्थानिकी उपकरण इन उपयोग फसल स्वास्थ्य और भूमि की स्थिति ने ट्रैक करने के वास्ते करी जाए और वह वेब आधारित प्लेटफॉर्म किसानों ने डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए विकसित करी जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये तकनीकी कृषि उपकरण और उपकरण के बीच डेटा रो आदान प्रदान करी जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये तकनीक कृषि में रोबोटिक्स सटीक फसल अनुमान और रोग पतंगों की भविष्यवाणी के लिए उपयोग करी जाए। उदाहरण ये है, इरा कई उदाहरण है जहाँ ड्रोन है भारत सरकार हूँ फसल सुरक्षा विशेषकर टिड्डी नियंत्रण वास्ते पर ड्रोन का उपयोग शुरू करी है, या ये ग्रीन सेंस है जबकि युक्तिस द्वारा विकसित एक रिमोट फार्म मॉनिटरिंग समाधान है। फसल डिहाट और क्रोपिन में एग्रीटेक स्टार्टअप्स है जगह एआई और एलओटी का उपयोग करके किसानों ने मदद करे। डिजिटल कृषि राज्य का मुख्य स्तंभ अगर आप बात करा तो जो डिजिटल कृषि मिशन रहते हैं दो प्रमुख स्तंभ पर काम करियो जा रही है। एक है एग्री स्टैक, वो किसाना रो एक डिजिटल पहचान प्लेटफार्म है जो विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं ने किसानों तक पहुँचाने में मदद करे, और इनमें तीन महत्वपूर्ण घटक है जहाँ एक तो पहला किसानों रो रजिस्ट्रेशन है, इनमें किसानों के बारे में डेटा एकत्रित करी जाए और किरे पास कितनी जमीन है, बीरे परिवार में कौन कौन सदस्य है, बोई जाने वाली फसलें किसी किसी है, वो मतलब किसान रजिस्ट्रेशन में लिखी जाए। दूसरा है भू स्थानिक गाँव मानचित्र, इनमें किसानों रे रजिस्टर ने भूमि रे रिकॉर्ड साथ किसानों की आई डी जो लिंक करी जाए, और अगलो है फसल बोने री रजिस्ट्री, इनमें डिजिटल जो फसल सर्वेक्षण प्रणाली में जका भी उपग्रह और भौतिक डेटा का उपयोग कर फसल क्षेत्र सटीक अनुमान प्रदान करी जाए। कृषि निर्णय सहायता सामग्री अगले है, यह प्रणाली कृषि से संबंधित विभिन्न डेटा स्रोतों ने एकीकृत करे और जैसा कि उपग्रह डेटा मौसम मिट्टी का स्वास्थ्य जलवायु पैटर्न आदि ये डेटा निर्णय लेने में मदद करता है। कृषि विज्ञानियों और एग्रीटेक कंपनियों के लिए नवाचार को बढ़ावा देता है। डिजिटल कृषि मिशनरी विशेषता और नवाचार, मिट्टी प्रोफाइल मैपिंग यह तकनीकी खेत स्तर पर मिट्टी के स्वास्थ्य विस्तार में अध्ययन करे। डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे वो फसल री उपज री सटीक भविष्यवाणी करे, और डेटा जो इंटीग्रेशन है और डिजिटल उपकरण ने सरकारी पोर्टल जहाँ पीएम किसान है, सोइल हेल्थ कार्ड है और कॉर्फ इंश्योरेंस डेटाबेस में जोड़े, और एक वे ओपन एफआईज और निजी जो एग्रीटेक स्टार्टअप्स को इनोवेटिव और स्केलेबल एप्लीकेशन ने बनाने का अवसर प्रदान करें। और मिशन रहे जो को आपने डिजिटल कसीरा जगह मिशन रहा लक्ष्य और उद्देश्य बारे में अगर आप बात करें तो वो है 110 मिलियन किसानों के लिए डिजिटल पहचान अगला 3 वर्ष में करनी, और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल फसल सर्वेक्षण अगला 2 वर्ष में चालू करना, और कृषि बीमा और सब्सिडी और संक्षिप्त वितरण और जारी रही, और एआई आधारित कीट और रोग भविष्यवाणी भी करने का काम भी निरंतर कैरियर त्रेवेलो और इन डिजिटल कृषि मिशन रा लाभ गाई है जहाँ एक लाभ है सशक्त निर्णय लेना जब हम किसान नीति निर्माता और शोधकर्ता ने वास्तविक समय में सटीक जानकारी मिली और प्रभावी शासन योजना और सब्सिडी रो बेहतर लक्ष्य निर्धारण हुई बाजार लिंकिंग यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यमों किसानों सीधा खरीदारों और प्रसंस्करणताओं के साथ जुड़ी जी जलवायु सहनशीलता मौसम और मिट्टी डेटा का उपयोग करके कृषि पैटर्न अनुकूलित करी जी पारदर्शिता कृषि समर्थन तंत्र में भ्रष्टाचार और लीकेज कम हुई सामने आने वाले चुनौतियाँ किसी है डिजिटल साक्षरता जहाँ कई किसान है जगह डिजिटल तकनीकों अपरिचित है हमारे पास स्मार्टफोन भी नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर भी कमी है ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट कनेक्टिविटी समस्या बनी हुई है डेटा गोपनीयता किसान रहे संवेदनशील डेटा रहे उपयोग और संग्रहण लेकर चिंता है विभागों के बीच समन्वय कृषि भूमि मौसम और उपग्रह एजेंसियां भी डेटा और सही ढंग एकीकरण की प्रक्रिया अभी भी विकसित हो रही है भविष्य रेरा एपीआई डीपीआई ने मजबूत करनी सॉरी एग्री डीपीआई ने मजबूत करना इन लिए गोपनीयता प्रथम नीतियों आवश्यकता है किसाना और एक्सटेंशन कार्यकर्ता और क्षमता का निर्माण करना डिजिटल उपकरण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण निर्माण दी जाए और सार्वजनिक निजी साझेदारियाँ नवाचारा ने बढ़ावा देने वास्ते सार्वजनिक और निजी संस्थाओं का सहयोग करना और स्थानीय समाधान भी है जकेर में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र लिए क्षेत्रीय भाषा और माए समाधान उपलब्ध कराना ये सब कार्य इन डिजिटल तकनीक रे माए हुए ला देखो भैया बता तो और भी करा लेकिन पहला लेवा ब्रेक
1: मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SD कोड है 01582 और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं सूचना समाप्त हुई
0: हाँ तो भैया आपा तो बात करी डिजिटल कृषि के बारे में और देखो भैया थाने रोजिना नुआ आदमी मिलाया करा मेरा अनुभव सुनाया करा तो आज मैं गियो गांव पाड़ान और बैठे मैंने कृषक मिलिया राजा राम जी जखो मैं करी खरीफ री खेती के बारे में बतड़ जकी करा आप ताई पूछती
3: किसान भाइयों बंतल करने वास्ते गांव गांव गया करार इन्हें कड़ी माज नागौर निकलिया हाँ चालता पहुंच गया नागौर उत्तरा दे पके राजा का स्थित गांव है बारह माए एक भाई आप खेत में काम लग रहा है रोड में तैयारी डानी है कर लाऊं थोड़ी बतल
4: राम राम सा
3: आप खड़ा किस गाँव री कांकड़े सरापरी
4: पडान गाँव री कांकड़े रहते हैं पंचायत
3: अच्छा तो आप शुभ नाम
4: हमारा शुभ नाम राजा राम
3: जी तो आप खेती तो ठीक लगे कितनी खेती करिए
4: खेती 25 बीघा है
3: कहीं कहीं पायो है
4: इमें देखो 9-10 बीघा बाजरी है 4-5 बीघा मोट है लार लो कुआर है 10 बीघा
3: अच्छा तो क्या अनुदान
4: धान ठीक है सर
3: निदान निकला लियो
4: हाँ निदान कटा है
3: तो राजा राम जी एक चीज देखी है कि इन साल बरखा रही तो कोई कमी को नहीं
4: कोई कमी
3: इंद्र भगवान मेहरबान है और खेती भी लगभग टाइम होगी 1-2 जुलाई के आसपास है ना
4: हाँ बिल्कुल
3: तो 1.5 महीने बायोडाने भी हुई हो तो आप जो को बीज किस काम में लियो
4: देखो बाजरी में देसी काम है ला अच्छा। क्योंकि हमारे जीवन वास्ते काम है शंकर की रोटी बढ़िया रोटी आप जीमा रोटी थाने जीमन में लागी गिजगिजी हुई जना शंकर बाजरो हुए घणो ही है यदि बेचन की दृष्टि कोई भवे नहीं तो शंकर बाजरो घणो ही हुए लेकिन आमने वो शंकर बाजरो काम
3: कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा वसा की मात्रा ज्यादा आवे और जीमण ने भी निरोग मोटे अनाज में आवे और सरकार भी कहे खाओ भाई रोग प्रतिरोधक क्षमता भी तगड़ी हुए आदमी बीमार नहीं पड़े अपने वातावरण ने भी सूट करे तो आप बाजरी काम में लो जीमण।
4: हाँ बाजरी काम में ला ज्यादातर बाकी थोड़ा थोड़ा कोई गेहूं जीमा बाकी ज्यादातर बाजरी काम में ला।
3: बहुत बढ़िया सा तो आप मतलब गरी बाजरी बीजो।
4: हाँ
3: और ए जे मोट गुआर तिलरी बात करा तो ओ गरोई बीज तैयार करो खटी बाजार
4: ओ देखो के मैं की तो मारे दाल वास्ते घर वास्ते मैं मारे देसी मोट वा बाजरी का टेढ़ो किया करा जगह टेढ़ो बोलिया करे।
3: अच्छा अच्छा मतलब मिश्रित खेती।
4: हाँ मिश्रित खेती जके मैं मतलब भी मकाई एक हाथे टेढ़ो प्रदान पे मोट और भाई मूंग उजिए तिल उजिए इन पे घर वास्ते काम आ जिए थोड़ो खंड कोई हाइब्रिड बीज को बाजार में लानो हुए वो लार बीज
3: वो बाजार में लाओ ने कटु लाओ
4: वो बाजार में लावा नहीं है कि भाई प्रमाणित लानो हुए जना तो आजकल दुकान वाले घने ही बेचे है हाइब्रिड तो बाहू ही लिया बेड़ी की बात
3: तो बाहू लो बिल लो।
4: हाँ बकायदा बिल जीएसटी दे बिल
3: देखो बिल जरूरी है बिल लाए बिना काल ने कोई धोखो ही हुई है कोई गलत बीज दे दे तो दाव क्लेम ही नहीं कर सको तो बिल लाना जरूरी। एक राजा राम जी और बात करनी चाहूंगा जकी थारे फसल है आमने अट बिरानी खेती वेर भाई मौसम आधारित वे नितरा इकांद रे काल पड़ जाए तो थे ही रोकी फसल बीमा हो गए देख रहे हो।
4: हाँ फसल बीमा करायो इनको देखो कि बाजरी को है 423 रुपया करीब करीब मूंग है मतलब करीब 645 रुपया हेक्टर मूंग कर अगला
3: 2400 लगे मतलब आप करायो फसल।
4: हाँ करायो
3: इन जोखिम घट जाए वैसा कोई क्षतिपूर्ति हो जाए काले नुकसान वे करे तो।
4: हाँ जी
3: भाई एक बात आप बताओ राजा राम जी आप रो खेत है तो थे खेती करो ना कदी मिट्टी की जांच ही करो।
4: जांच मिट्टी की ज्यादातर कौन कराऊं क्योंकि गांव में मिट्टी की जांच करने लोग एक वर्ष पहले
3: राजा राम जी आप बात गलत है माना सर में एक आपने मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
4: है। हाँ है
3: 5 रुपया हम करे।
4: हाँ करे सर
3: तो थे कहीं करो 20 शेप में खड्डा खोद लो खेत में 7-8 दिया कने मत और खेल दी करना नीचे नहीं खोदना अलग अलग दिया खोद भी नहीं मिला 2 किलो मिश्रण एक मेडियम गाल खेतरा खसरा नंबर लिख ले जाओ नहीं तो जांच बता दी भाई थर किसी फसल ठीक हो तो ये बात नॉलेज है कोनी
4: इन बात रो कम लो ले जाएगा गांव में अभी तक कोई प्रचार करे।
3: अच्छा गर्मी की जुताई करनी पड़े।
4: हाँ
3: जमीन
4: हाँ नहीं मार जमीन जरूरत का
3: अच्छा
4: क्योंकि धोरा तो आ देखो इन करानी जना वो कहीं है आंधी बाजे वो नलेगी जना भी वो एकदम बाहर तेज है और कम उंडर बुई जी ना बातों ही कड़ूड़ी काम की।
3: अच्छा
4: तो पक्की जमीन में है नी बे जुताई करे बंगे काम
3: तो खाद किसी काम में लोते।
4: देखो खाद में गोबर वाली काम है
3: कंपोस्ट उजी रे फालतू को बीज वगैरह खरपतवार भी कम हुई नष्ट उजी और एक जगह कंपोस्ट खाद ना हरे भी ज्यादा
4: हरे तो
3: पड़ी 2-3 बीघा जीते
4: हरे तो है लेकिन इनमें कहीं है अभी गाँव में कहीं करे भाई आप जो खाद रेड ने किया रेड दी खिंडावनी है भी खिंडा थी। अब आप इन्हें कंपोस्ट बना खिंडावा जन भी में देखो टाइम भी लगे और भी करे आजकल देखो हर मतलब कोई आदमी खेती करना कम चाहो
3: तो एक कहीं खेता में उजाड़ भी है के थे तारबंदी रे करिए बाढ़ रही
4: ए देखो धन पशु आ गए।
3: अच्छा
4: धन पशु आज करना पड़े
3: तो फाटक वगैरह को नहीं काम
4: नहीं नहीं फाटक अटकी का नहीं
3: तो पंचायत की प्रबंध नहीं करी
4: नहीं पंचायत कौन करियो थेट हूँ थके जाओ नहीं रोड में थाने 50 गया मन ला दी।
3: अच्छा
4: थाने गाड़ी पर चाल नहीं पड़ी
3: आवारा पशु ज्यादा है।
4: हाँ आवारा पशु
3: तो बात ठीक बताई राजा राम जी घना गाँव रहा पता कहाँ आवारा पशु वहाँ पर बड़ी दिक्कत है तो इन वास्ते व्यवस्था तो गाँव रहा होनी चाहिए तो एक बताओ राजा राम जी थे निदान वगैरह कर लियो तो घर ही करियो मजदूर लाना पड़े
4: नहीं की मजदूर लाया की घर
3: तो कहीं घरे लुगाया पता यार काम कम करेगा आजकल
4: नहीं नहीं काम घणो ही करे कनी पहली हल्ती तो भी काम हुए कोन हो
3: तो काया दोरी करनी चाहो कोनी।
4: हां क्योंकि टावरा नी स्कूल में ले और करे जते टाइम हो जे एर पछे वा बो देखो लारे थोड़ी गर्मी पड़ी एर पछो कहीं यो मैं आ गयो नहीं कारण कहे कि निनान तो करनो
3: तो मने एक बात बताओ ए काया दोरी नहीं करी जने मया कटो आई
4: बा दोरी है सर
3: है
4: बा दोरी है काया तो की दोरी
3: खेती तो आम नो धर्म में किसान रो
4: बिल्कुल सर तो खेती लोग करे कटे अभी लोग खेत बाहर दे दा। अरे भाई बाहर दे दो,
3: बाहर कहीं हिसाब देवे,
4: बाहर दे कोई अद्वाद कोई किए कोई किए इंदड़े
3: अच्छा
4: आदो बीज आदो वही
3: थे तो खुद आतू काम करो।
4: हाँ मैं तो खुद मारो
3: तो अब कई कारण मानो थे भी पड़ जाली के आदमियों का समय दी थी को मनाया गया लोग ही खेती बाड़ी और पशुधन विमुख क्यों हो रही है।
4: देखो यूं विमुख यूं वास्ते हो रही है कि यूं ज्यादा लोगों ने प्रॉफिट कम हो रही है खेती की जबकि फसल का दाम मिलना चाहिए नहीं
3: अच्छा
4: पे दाम मिल नहीं रही है
3: तो थारे कहना मतलब MSP लागू करनी जरूरी है।
4: हाँ पे दाम मिल ही नहीं ना लोग खेती करनी चालू कर दी। अभी एक आदमी है वो मान लो बारह की हो बिना 15,000 रुपए मिले मान लो 15 मान लो आप तो ही वो मान लो आज 4 महीना खेती पाकी 3 महीना ना मान 90,000 रुपए लिया है। अभी खेती में क्या गारंटी वो 90,000 रुपए कर लेगी
3: मौसमी।

0: हाँ भाई मान लो अभी अरसो में एक वो झोलो बाजिया करे हाँ। जे वो झोलो बाजी तो ही बाल दे
1: झोलो बाल दे
0: हाँ वो ही बाल दे
1: की डेरा कहता के पानी के माई खड़ी फसल ने बाल दे तो कोई तो खतरनाक
0: बिल्कुल
1: के नहीं सके झोलो लाई गयो
0: हाँ झोलो लाई गयो बताओ
1: खैर आ बात तो बहुत बढ़िया बताई राजा राम जी और इन अलावा बार थे नया जगह किसान भाई है बाने कहीं कहना तो
0: बाने हुआ ही कहना चाहूँ ज्यादा में ज्यादा आप खेती करो और खेती में निर्भर रहो अपने भगवान में भरोसा रखो और भगवान जरूर था ना एक बात है मेहनत को फलता ही हूँ आई कहना चाहूँ यदि खेती नहीं करा हगड़ा ही डाले गई वो उपाय लही जना तो भाई कौन आना समय में आप जी बाकी
1: तो दाव डंडा ही रखो
0: हाँ
1: कहीं दिनों
0: देखो सर एक गाय एक हमने भैंस
1: तो दूध बेचो घर ही रखो
0: नहीं नहीं की घर ही रखा बेचा ऐसा की बेचा फेंट ही को डंडे जड़ के बेचा
1: अच्छा तो डेरी है गांव में आपने मतलब
0: हाँ गांव में सर की डेरी
1: उचित दाम नहीं मिला आपने
0: हाँ, बात है गाइडियन ले रहा है गाइडियन आपके साथ
1: अच्छा अच्छा तो हाँ ढूंढ भी रखोगे
0: नहीं नहीं हाँ ढूंढ की को रखा
1: पहला
0: हाँ पहले रख दा कोई टाइम में अभी को रखा
1: ओ कहीं करना है पहला तो ऊंट हांड
0: देखो आजकल आ गया ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: ठीक है ए जट खेत बाने मान लो
1: पहला तो गाणो ही गावे के मृदरिया धोरा में चले ऊंट गाडो तो हम रेगिस्तान में
0: रोजा बिल्कुल है तो गाडे बिना काम हरे कोई नहीं अभी थोड़ो काम करने ट्रैक्टर ने बुलावा नहीं हमको ट्रैक्टर के कही मु तो इतरी पे लो ओ हगणी आपा गाडे ने बुलावा नहीं तो वो कही भाई हूं होरी पे गाडे उतारे खाद खिलाए
1: अच्छा
0: हगन ट्रैक्टर ने कान कही 300 रुपए गेड़ो खिलाए लेकिन गाडा है ही कोई नहीं क्योंकि लाख रुपया गाड़े का लागे ये गाड़ो लावे ना बिन बुलावे कोई कोई नहीं
1: अच्छा खैर कुल मिला राजा राम जी जगी थे आज बतल करी इन वास्ता आप गणो गणो धन्यवाद
0: धन्यवाद सर राम
2: प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार
3: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं तो नोट कीजिए हमारे फोन नंबर है 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582 और हाँ आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं सूचना समाप्त हुई
4: हाँ तो बया तो थे राजा राम जी आप रानू बहुत सुनाया और बात रही थी मारी अतावड़ी जगह माँ मारी उड़ी माँ बात हाँ था भूख दी अब देखो नागौर मंडी हूँ बाजार बावरी पानड़ी है आज नागौर मंडी रमाए रायडो भी कियो जैसे में 40% फेट हो वो 7,850 रुपये प्रति क्विंटल और मूंगारी बोली लगी जगह नया मूंग है बेबी किया 8,000 ले पर 8,600 रुपये प्रति क्विंटल और पुराना मूंग भी किया 6,000 ले पर 7,600 रुपये प्रति क्विंटल गंवार 6,000 ले पर 6,275 रुपये प्रति क्विंटल जीरो आज नीचे रमाई 1700 और ऊपर में 20,650 रुपये प्रति क्विंटल सौंपरी बोली लगी 8,000 ले पर ऊपर रमाई 11,000 इसब गोल्ड रियो 9,500 ले पर और 12,600 रुपये प्रति क्विंटल असाड़ियो हो 5,600 रुपये ले पर और 6,050 रुपये प्रति क्विंटल दाना मिति आदरी 6,000 और ऊपर रमाई 6,650 रुपये प्रति क्विंटल सिंधी सुहा हो नीचे में 6,000 ऊपर में 7,800 रुपये प्रति क्विंटल तारा मीरो 5,800 ले पर और 6,150 रुपये प्रति क्विंटल जमारी 3,500 ले 4,500 रुपये प्रति क्विंटल और कालिया जका तिल है काला तिल बे 9,500 रुपये ले पर आर ऊपर में 11,100 रुपये प्रति क्विंटल और सफेद तिल 10,000 ले पर आर ऊपर में 11,600 रुपये प्रति क्विंटल और चना रिया 5,400 रुपये ले पर आर 5,700 रुपये प्रति क्विंटल ए है बाजार भाव अगर कोई भाई रेखा ने जींस है तो ए बाजार भाव ले सके बिरा ए बाजार भाव बढ़ सके देखो भया अलावा भी अथैया अपनी जारी रही डिजिटल कृषि के बारे में लेकिन मैं अगली हमेशा ये

चीज ठीक होनी थाने उड़ी करिया करे और मैं भी खेती बाड़ी का ये करूँ माई डान रोजिना कोई न कोई गीत संगीत सुनाया करा। तो आज थाने सुनावा और लोकगीत पूजा सरिता और धीरेन्द्र और मारा साथी घनारी आवाज रमाई बहुत ही सुरीलो लोकगीत।

तो भया थे बहुत ही सुरीलो लोग गीत सुनियो। देखो राजस्थानी गीत सुना जना रही एक अलग ही मिठास है, अलग ही धमक है और बहुत ही आनंद आगी तारे माया आवे। देखो अब किसान भाई ने भी बार जो को महीनो चाल रही है, मान लो सितंबर महीनो चाल रही है, तो खरीफ री फसलों की विशेष देख रेख करनी है, निराई गुड़ाई और कीट नियंत्रण पर सब ज्यादा ध्यान देना है। खरीफ फसलों की देख रेख और जरूरी कार्य करना है। इन समय बाजरा मूंग मोट गवार सोयाबीन और धान जड़ी फसलों की बडवार और भी रमाए फाल या दाना री अवस्था वह तो किसानों ने कई बात ध्यान रखनी है। खरपतवार मत नियंत्रण करना है, खेता रमाए लगातार खरपतवार तक घास फूस हवा निकालते रहना है ताकि पौधा री पर्याप्त पोषक तत्व और नमी मिले, और कीट और रोग प्रबंधन करना है। नमी और उमस रह कारण फसला रमाए इली है, तना छेदक है, अन्य रोगारो खतरो बढ़ जाए तो लक्षण आनंद एक रही कृषि विशेषज्ञ से सलाह रहा हूँ उचित कीटनाशक छिड़काव करना है और जल प्रबंधन करना है। जगह क्षेत्र में बारिश कम है जटे हल्की सिंचाई या नमी बनाए रखने रो उपाय करना है। अत्यधिक बारिश जल भराव वाला खेतर में अतिरिक्त पानी बाहर निकालने की व्यवस्था रखनी है। मौसम रो पूर्वानुमान फसल कटाई या आगामी कार्यों पहले मौसम की जानकारी जरूर लेनी है ताकि फसल ने नुकसान हो बचा सका। यह सेंग बता आपने ध्यान रखनी है। और अगर बात करें बार मुख्य फसलों बार आपने जो कि बाजरी गंवार धान सोयाबीन बहुड़ की है और तो आ सब रो अपने ध्यान रखना है और खेती के बारे में हमेशा जागरूक रखना है, नई तकनीकारों भी प्रयोग करना है। अतः तो घनी करनी चाहवा अपन घड़ी री टकटकी के रही अपने कार्यक्रम तेड़ो वक्त वेरियो पूरा इन सीधी रहो अपने प्रेम बहन सीख करा। राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, आकाशवाणी नागौर का ये चिरम चैनल है। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार, स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। श्रोताओं, हमारा विशेष धन्यवाद स्वीकार कीजिए, क्योंकि पिछले सप्ताह के प्रसारण में हमने मोबाइल, AI और परिवार जैसे विषयों पर बात की थी,
2: और आप सबसे निवेदन किया था कि इन विषयों पर कुछ पंक्तियाँ और स्लोगन लिख भेजें। तो सुनते हैं एक स्लोगन
3: जो हमें लिखा है ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू, लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। लिखते हैं
2: 5 अगस्त, विषय मोबाइल पर स्लोगन। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। मोबाइल हमसे है, हम मोबाइल से नहीं। ये हमारा सेवक है, स्वामी नहीं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस शानदार स्लोगन के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले सप्ताह संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलोदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती कुमारी और ओम कुमार जी लिखते हैं, ये भी जानिए मैं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया जी पर आधारित जानकारी सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा।
2: उनके जीवन, संघर्ष और अदम्य देशभक्ति के बारे में जानना बेहद प्रेरणादायक रहा। देश के प्रति उनका समर्पण और राष्ट्र प्रेम वास्तव में सराहनीय है। कार्यक्रम की पूरी टीम को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। राजाजी नगर बेंगलोर से अखिला प्रसाद और NR प्रसाद ने मोबाइल विषय पर स्लोगन भेजते हुए लिखा है,
3: डिजिटल तकनीक का उपयोग ज्ञानवर्धन और कार्य को गति देने के लिए करें, नकारात्मक कार्यों के लिए कभी नहीं। मोबाइल को बच्चों का खिलौना न बनाएं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर।
2: ग्राम मंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी अंगारे ने शब्द का अर्थ बताते हुए लिखा है, वैमानिकी का अर्थ है विमान उड़ाने से संबंधित विज्ञान।
3: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबकी प्रतिभागिता के लिए। हम हरदम प्रयास करते हैं कि उमंग कार्यक्रम के द्वारा आपको रोचक से रोचक जानकारी दें
2: जी,
3: और मनोरंजक शैक्षिक कार्यक्रम भी सुनाएं। तो अब सुनते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, थर्मामीटर या ज्वर मापी यंत्र का आविष्कार किसने किया था?
2: थर्मामीटर का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। इसे आधुनिक रूप दिया था 1714 में डेनियल फेरनहाइट ने।
3: हमारा अगला प्रश्न था, आंग किसे कहते हैं और ये किस जनजाति में प्रचलित है?
2: आंग का अर्थ होता है राजा, मुखिया या वंशानुगत प्रमुख। ये नागालैंड की कोयांक जनजाति की सर्वोच्च उपाधि है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
2: डार्क स्काई रिजर्व उस विशेष जगह को कहते हैं जहां कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, ताकि वहां के आकाश को वास्तविकता में देखा जा सके।
3: हमारा अगला प्रश्न था, मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन क्या है?
2: मौसिन राम और मेघालय की खासी जनजातियों का मुख्य भोजन चावल और जादोह है।
3: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, राजस्थान के किस गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है?
2: राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी इलाके के फलौदी और उसके आसपास के गांवों में गर्मियों के दिनों में तापमान बेहद ऊंचा पहुंच जाता है, लगभग 50 से 52 डिग्री सेल्सियस।
3: श्रोताओ, एक बहुत ही खास निवेदन है आप सबसे, ध्यान से सुनिएगा कि मात्र सुविचार ना भेजें। इन दिनों सुविचारों की बाढ़ आ रही है
2: जी।
3: सुविचार भेजना आसान है, लेकिन प्रश्नों के उत्तर देना और कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना जरा कठिन।
2: सुविचार जरूर भेजें, लेकिन कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी अवश्य दें। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहां आपको कक्षा 9 तक की सारी पुस्तकें ध्वनि रूप में उपलब्ध हो जाएंगी।
3: तो श्रोताओं, अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न। प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे?
3: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है सीइंग विदाउट सीइंग।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करते हुए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों के मन में जागरूकता को बढ़ाता है।
4: Little Long Changla returned from the school. She opened the door quietly. She kept her bag on the table quietly. Her mother looked at her.
5: Unchangla, you're very quiet today. Did anything happen in the school?
6: Yes, Ava. A new boy came to our school. He sits in our class.
5: Yes.
6: The teacher helped him sit in the front desk. He wears black glasses. He cannot see. He will come every day. How will he do things?
5: Finish your biscuits and milk. Then we will play a new game.
6: Yes, let us play.
4: She tied a scarf over Ongshangla's eyes.
5: Now, tell me, what do I hold in my hand?
6: How can I? My eyes are closed. I can't see.
5: You can find out. Try it. What do I hold?
4: Ongshangla touched it.
6: It is something soft. A flower.
5: Yes. But what flower is it? Smell it.
6: It is a rose.
5: Good. Now try another thing. What do I hold?
6: I know. It is the bell. The small bell that gives such a musical sound. I can hear it, Ava.
4: Ongshangla took the bell and shook it herself.
5: Smart girl. What do I hold now? Do you know?
4: Ongshangla touched it.
6: It is a glass.
4: She put one finger slightly into the glass.
6: A glass of water?
5: Are you sure? It could be milk or juice.
4: Ongshangla tasted it.
6: Oh, it is not water. It is orange juice.
5: Good girl. Now, I will remove the scarf. You must tell what is in front of you.
4: She took off the scarf. Ongshangla blinked and looked at her.
6: It is you, Ava. I see you. That was a wonderful game, Ava.
5: So, Ongshangla, if a child cannot see, there are other ways of finding out things. But the child may have some difficulties. I hope all of you will be friends with the new boy.
6: Yes, Ava.
5: Good girl.
4: Ongshangla calls her mother Ava. What is the word for mother in your mother tongue? Close your eyes. Imagine that when your eyes are closed, how would you identify water, flower, sugar, direction of a clapping sound?
2: Note to the teacher. Sensitize children to the challenges faced by the differently abled.
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम Seeing Without Seeing.
7: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई. मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना. हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ.
8: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया.
7: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी रुक सकती है.
9: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो. सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
3: और इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।
2: ये कार्यक्रम प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक व उपन्यासकार ओ हेनरी द्वारा रचित कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण है, जिसमें बताया गया है कि यदि मन में कोई डर या कुंठा बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी मार्मिकता से मानवीय संवेदनाओं को भी स्पर्श किया गया है।
10: साथियों नमस्कार।
11: नमस्कार साथियों,
10: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
11: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
10: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनविच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है, इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
11: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनविच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनविच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
10: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
12: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
13: ओ सू, ग्रीनविच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
12: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
13: यस।
11: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनविच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
10: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
11: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
14: सू
12: जी,
14: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
12: जी हाँ।
14: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
12: जी डॉक्टर साहब।
14: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
12: मैं पूछती हूँ।
10: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
11: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
6: 15, 40,
12: क्या?
10: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना।
6: 13, 12, 11। ओह
12: जॉन्सी,
6: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
13: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
12: क्या गिन रही हो?
6: 11, 10, 9। ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
12: क्या कम हो गए हैं?
6: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
10: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
12: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
6: 6, now it's 6, 5, 4। ओह
12: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
6: Only 4।
12: मेरी तरफ देखो
6: सू, ओनली 4। ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
12: क्या 3 बचे हैं? What's 3 dear?
6: 3 पत्तियां।
12: पत्तियां?
6: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
12: हाँ हाँ,
6: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
12: क्या लगता है?
6: यही कि बस अब 3 पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
12: क्या जॉन्सी?
6: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
12: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
6: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
12: हाँ
6: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
12: ओ जॉन्सी।
10: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
13: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
10: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
13: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
15: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
10: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
13: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
6: अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
10: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
15: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
10: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
11: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
6: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
10: साथियों, जॉनसी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉनसी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
11: जैसे ही सुबह हुई जॉनसी ने सू से कहा,
6: सू मेरी दोस्त।
12: हाँ जॉनसी।
6: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहां है या नहीं। खोल सरक खिड़की सू।
10: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉनसी ने खिड़की की ओर देखा लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। अचानक जॉनसी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
6: सू।
12: हाँ जॉनसी।
6: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
12: हाँ बिल्कुल,
6: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
12: बिल्कुल जॉनसी।
6: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
12: पत्ता?
6: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
12: हाँ, हाँ। मैंने देखा, मैंने देखा जॉनसी, मैंने देखा।
11: हाँ। दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वही का वही था। जॉनसी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
14: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
11: जॉनसी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
12: जॉनसी, कैसा महसूस कर रही हो?
6: बेहतर।
12: ये लो कॉफी पियो।
6: थैंक यू
12: जॉनसी। एक बुरी खबर भी है।
6: क्या हुआ?
12: वो मिस्टर बेयरमैन उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
13: कौन बैरमैन? वही बूढ़े कलाकार?
12: हाँ।
13: ओह, जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
12: हाँ वही।
13: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
12: हाँ वही मिस्टर बैरमैन।
13: ओह गॉड,
12: उनकी हालत

0: आखिर क्या हो सकता है सू?
1: जॉन्सी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
2: जॉन्सी
0: हुँ?
2: जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया।
0: ओह,
2: उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे।
0: ओह,
2: जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
0: पेंटिंग?
2: हाँ।
0: कैसी पेंटिंग?
2: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
0: ओह, तो वो पेंटिंग है?
2: हाँ।
0: असली पत्ता नहीं है?
2: नहीं।
0: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
2: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस?
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
2: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
2: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
2: हाँ
0: मास्टरपीस।
2: हाँ
0: मास्टरपीस। वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
1: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता। आशा है कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
5: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार, नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: FM में 103.7 MHz पर यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म गीत दिल से। यह है दिल से की पहली पेशकश। फरमाइश करने वाले हैं नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र सिड्ढा जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म दो रास्ते का ये गाना।

0: यह है अगली पेशकश शिव, और इसके फरमाइश करता है दयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार। इन्होंने फरमाइश की है ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से, और साथ ही पद्मा टाकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से फरमाइश करने वाले हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीतीश शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म आनंद का ये गाना।
1: मैंने

यह है दिल से कार्यक्रम की अगली फरमाइश भेजने वाले हैं योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती, कविता, मोहन, कुशल, विशाल, मल्हार, श्याम, गोविंद मस्के और सभी साथीगण। इन्होंने फरमाइश भेजी है गांव बिटोड़ा, भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से। और साथ ही इनके साथ भेजने वाले हैं फरमाइश मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार, नरगिस खातून। इन्होंने फरमाइश की है ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। और इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राजपूत का ये गाना।

अगली फरमाइश आई है पांडर कवड़ा से। भेजने वाले हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्हार शाह से, सूरज लौंडे, प्राची लौंडे, एकलव्य लौंडे, और इसी गाने के लिए फरमाइश की है वडिंगा खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने। इन्होंने सुनना चाहा है रोटी कपड़ा और मकान का ये गाना।

यह है कार्यक्रम की अगली पेशकश फरमाइश करने वाले हैं बन्ने बुजुर्ग पलेरा टिकमगढ़ से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, और आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म 16 साल का ये गाना।

यह है कार्यक्रम की अगली पेशकश। सुनना चाहते हैं बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू, धमदा ग्राम सुखरी कला से उत्तम सिंह जंगेल, मॉरस जंगेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल, अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, अंजलि जंगेल और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला से सुनना चाहते हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इन्होंने सुनना चाहा है बिन फेरे हम तेरे फिल्म का ये गाना।

अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। आकाशवाणी नागौर का ये चरमे चैनल है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। डीजे सुनिए कार्यक्रम विविधा। विविधा में आज हम आपको सुनवा रहे हैं झलकी। कमर्शियल ब्रेक।

0: सरजी सरजी, ओ सरजी, ओ बड़ी लॉटरी लगी, ओ ये देखो।
1: और लेकिन मैंने तो कोई लॉटरी लगाई ही नहीं थी।
0: ओ सरजी आप समझे नहीं, ओ मेरा कहने का मतलब था इस अखबार का ये एडवर्टाइजिंग कॉलम अपने लिए नोटों का संदेशा लेकर आया है।
1: ओ खा, ओ की लिखा है?
0: ओ जी पढ़ो तुसी भी।
1: वांटेड राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बंदूक वाला, शॉर्टली वांट टू स्टार्ट अ कॉमेडी सीरियल,
0: हाँ जी
1: एक्सपीरियंस्ड विल गेट प्रेफरेंस। ओ चली यार, ओ चल चलते हैं इस प्रोड्यूसर दे काल, अपन तो कॉमेडी दे किंग है नहीं।
0: वाह जी, चलो बॉस, ओ इससे पहले कि कोई और बाजी मारे अपन चलते हैं मिस्टर बंदूक वाला के पास।
1: आहो

0: 陣咯，好似我而家都佢 call bell 係依啲。
1: 哦 ，Sir 姐，佢都 khatra hi hai。哦 ，call bell 都 sirf Yamraj 嘅 ghar pe nahi hoti。जहाँ पे बिना कॉल बेल बजाए गुजरना पड़ता है।
0: अल्लाह चुप करे, अभी हम अपने धंधे पानी की बात करने आए हैं। धंधे पानी के बीच में यमराज किधर से आ गया इडियट?
1: ओ सॉरी बात जी, गलती हो गई।
0: और चल ठीक है ठीक है, अब घुस जा अंदर।
1: ओ मैं क्या, नमस्कार जी। ओ जी, आपने सीरियल के लिए जो एडवर्टाइजमेंट दिया था उसके लिए मिलने आए हैं जी।
2: आइए प्लीज बैठिए।
1: ओ बैठो बहुत जी। ओ जी, आप हैं हमारे पॉपुलर सीरियल मेकर बंटा सिंह जी।
2: बंटा सिंह जी,
1: ओ आप नहीं जानते इनको? ओ ये तो बड़े पॉपुलर आदमी है जी।
2: कुछ सीरियल वीरियल भी बनाते हैं?
1: ओ बहुत बनाए हैं जी सीरियल, उल्टा सीधा टेढ़ा बक्सा आड़ा तिरछा। और जी अभी अपना लेटेस्ट सीरियल बन रहा है टेंशन ही टेंशन।
2: आपका बायोडेटा सुनकर तो मुझे टेंशन होने लगा है।
1: ओ यही टेंशन ही तो हमारी सक्सेस का राज है मिस्टर बंदूकवाला।
2: सो कैसे?
1: ओ ये जी दिमाग का काम है, ओ कभी कभी टेंशन भी बड़ी काम आती है।
2: कुछ रहस्य हमें भी तो बताओ जरा।
1: ओ वो जी बात ये थी, अपने बॉस ने तिकड़म सेट करके एक चैनल पर अपना सीरियल तो पास करवा लिया, और लेकिन ना तो इनके पास में कोई स्टोरी आइडिया था और ना ही कोई स्पॉन्सर। सो जी बड़ी प्रॉब्लम होगी। और लेकिन अपने बॉस भी तो फिर बॉस ही है ना। ओ बाजी, एक दिन संडास कार में बैठे बैठे अपनी दाढ़ी कुचल रहे थे कि अचानक
2: और कोई जगह नहीं मिली ना।
1: ओहो सुनो तो सही सर, ओके अचानक इनको एक आइडिया आया। ओ बाजी वो बाकी सारे काम भूल गए, वो चढ़ वहां से निकले, एक पेपर पर अपना आइडिया ब्रीफ किया और जी सीधे पहुंच गए स्पॉन्सर के पास। और जी स्पॉन्सर को आइडिया इतना पसंद आया कि आगे का सारा काम चुटकी में हो गया जी।
2: वैसे आइडिया क्या था?
1: आइडिया ओ काय का आइडिया जी, ओ आइडिया टेंशन का था जी, कि दर्शकों को टेंशन कैसे हो, और अगर टेंशन हो तो उसका इलाज हमारे स्पॉन्सर की दवाई से करो। बाजी सुपर हिट हो गया जी बॉस का प्रोग्राम।
2: फिर तो बड़ी चांदी रही होगी आपके बॉस की।
1: चांदी? ओ जी सोना था जी सोना। ओ सीरियल मेकिंग दे विच पैसा तो ले गया ही नहीं, अपने बंटा सिंह जी ने सारे फ्लॉप फिल्म मेकर्स की सारी फ्लॉप रीलें कलेक्ट कर ली, उनमें से बकवास शॉट कलेक्ट कर लिए, उस चुनिंदा फुटेज को एडिट करके अपना सीरियल बना लिया। जवाब नहीं जी अपने बॉस का, वो हींग लगी ना फिटकड़ी, बस बढ़ गया साडा टेंशन ही टेंशन।
2: पब्लिक रेस्पॉन्स तो बहुत ही बढ़िया रहा होगा।
1: ओ पूछो नहीं जी, वो सीरियल देख के लोगों को इतनी टेंशन हुई, ओ जी इतनी टेंशन हुई कि उन्होंने अपनी टेंशन रिलीज करने के लिए हमारे स्पॉन्सर की सारी दवाई खरीद ली। ओ जी हालत ये हुई कि पब्लिक डिमांड को पूरी करने के लिए हमारे स्पॉन्सर को मेडिसिन की एक और फैक्ट्री लगानी पड़ी। ओ इसको कहते हैं जी मैन विद द माइंड।
2: फिर तो आपके बॉस के सामने सीरियल बनाने वालों की लाइन लग गई होगी भाई।
1: ओ लाइन? ओ जी पूछो मत, तब से लेकर अब तक सिर दर्द पेट दर्द हाथ दर्द कमर दर्द और टांग दर्द वालों की मेडिसिन बनाने वालों की लाइन लगी हुई है। इधर घर के बाहर लंबी लाइन है, उधर टेलीफोन पे घंटी बजती रहती है, और बहुत बुरा हाल है जी।
2: तब तो आपके बॉस काफी व्यस्त होंगे।
1: और जी कहां दे व्यस्त, और जी बॉस तो तब से ही अंडरग्राउंड हो गए। अब आप ही बताओ मिस्टर बंदूक वाला, इतने सारे आइडियाज एक साथ कहां से लेके आए बंदा? वो एक पेट दर्द वालों के लिए, एक कमर दर्द की मेडिसिन वालों के लिए, एक टांग दर्द और एक हाथ दर्द वालों के लिए। अब जी टेंशन वाला आइडिया सक्सेस हो गया तो हमारे पास कोई आइडिया का खजाना तो है नहीं कि हम अपने सीरियल से एक साथ इतनी सारी बीमारियां पैदा कर सकें और मेडिसिन वाले मेडिसिन बेच सकें।
2: शुक्र है कुछ तो कल्याण हुआ बेचारे व्यूवर्स का।
1: आपने कुछ कहा जी मिस्टर गोली वाला?
2: जी मैं गोली वाला नहीं, मैं बंदूक वाला हूँ।
1: सॉरी सर सॉरी, हम अपनी गलती सुधार लेते हैं जी।
2: तो ठीक है मिस्टर सेक्रेटरी, अब ये तो तय है कि मुझे एक सीरियल बनाना है जो बहुत पॉपुलर हो, जिसमें एक्शन हो, रोमांस हो, थ्रिल हो, सस्पेंस हो और पॉपुलरिटी के सभी गुण हो।
1: ओ जी तो ये भी तय है कि उसके राइटर डायरेक्टर और व्यूअर अपने बंटा सिंह जी होंगे।
2: राइटर डायरेक्टर तक तो ठीक है मिस्टर, ये व्यूअर्स वाला मामला कुछ समझ में नहीं आया।
1: ओ जी एक बार अपने बॉस के साथ में ऐसा भी हो चुका, और इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, ओ वन मैन शो था जी, और मजबूरन दर्शकों की भूमिका भी इनको ही करनी पड़ी थी।
2: ओ आई सी, तब तो मिस्टर बंटा सिंह बहुत महान हैं।
1: हाँ जी हाँ जी, तो फिर मैं फाइनल समझूं?
2: अभी आपने कहानी तो सुनाई नहीं, बिना कहानी सुने मैं कैसे फाइनल कर सकता हूँ?
1: जी लो जी कहानी भी सुन लो। ओ वो यूं होता है जी के
2: क्या बात है सेक्रेटरी साहब, सब कुछ आप ही सुनाएंगे या आपके बॉस भी कुछ?
1: हाँ जी वो कहानी तो आपको बॉस ही सुनाएंगे सर जी, अभी आपको जीना चाहते हैं।
0: वाह खन्ना सेक्रेटरी, अब तू किसी काम का नहीं रहा,

0: मैंने तो सोचा था कि ये प्रोड्यूसर तेरी बकवास सुन के ही लंबा हो जाएगा और बस बाद में इसे हॉस्पिटल में भर्ती करा के हम इसकी सिंपैथी गेन कर लेंगे और अपना काम करवा लेंगे।
1: आई एम सॉरी सर, ओ मेरे को क्या मालूम था इसका हाजमा इतना तेज है कि ये मेरी सारी बकवास को ऐसे पचा जाएगा।
0: और ठीक है ये पहला मौका है इसलिए तुझे इस बार छोड़ता हूँ, आइंदा ऐसा कुछ हुआ नहीं तो तू तेरी तेरी तेरी सेक्रेटरीशिप चली जाएगी।
2: हाँ यस, तो भंटा सिंह जी सुनाइए कोई बढ़िया सी स्टोरी कि बस मजा आ जाए।
0: ओ जी तुसी फिकर नहीं करो जी, ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा कि बस मजा आ जाऊंगा।
2: आपकी बात सुनकर तो मैं कहानी का आइडिया सुनने के लिए बेताब हो गया हूँ, बस सुना ही डालिए।
0: ठीक है जी मैं कहानी सुनाता हूँ। ओ जी कैमरा ओपन होता है।
2: हाँ।
0: एक लड़की अपनी मस्ती में चली जा रही है। अजी और कहाँ जाएगी बेचारी, गुंडों के पास जा रही है।
2: गुंडों के पास?
0: हाँ।
2: मगर क्यों भाई?
0: क्यों जी, हीरोइन को हीरो से मिलाना नहीं है क्या?
2: मगर गुंडे और हीरो से मुलाकात, मैं कुछ समझा नहीं बंटा सिंह जी।
0: और लगता है आप नारी है, अरे जब तक हीरोइन को गुंडे छेड़ेंगे नहीं तब तक हीरो उसे बचाएगा कैसे, और जब हीरोइन को बचाएगा नहीं तो उनका आपस में प्यार कैसे होगा?
2: लेकिन स्टोरी के शुरू में दिशुं, दिशुं,
0: दिशुं। यही तो बात है, शुरुआत हमेशा डैशिंग ही होनी चाहिए। जैसे ही हीरोइन को गुंडे छेड़ते हैं, वैसे ही पीछे से हीरो आता है, इधर हीरोइन पर गुंडे हमला करते है, उधर हीरो अपनी जेब से पिस्टल निकालता है और उससे फायर कर देता है। इतने में एक कमर्शियल ब्रेक होता है।
2: कमर्शियल ब्रेक,
0: और इधर एड खत्म होता है, उधर हीरो हीरोइन को गुंडों से बचा के अपने घोड़े पे बिठा के निकल जाता है।
2: वाह वाह, शुरू में ही फायरिंग, काफी धमाकेदार शुरुआत है बंटा सिंह जी।
0: अब हम अपना सीरियल रोक कर एक क्विज रखेंगे जिसमें व्यूअर से पूछेंगे कि हीरो ने अपनी पिस्टल से किसका मर्डर किया। जो इसका सही जवाब देगा उसे ₹1,00,000 का इनाम दिया जाएगा।
2: इनाम और क्विज?
0: हाँ देखिए सर, अगर सीरियल को पॉपुलर बनाना है तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हाँ।
2: बंटा सिंह जी, लेकिन इनाम का ₹1,00,000 आएगा कहाँ से?
0: अजी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ना हमारा हीरो मर्डर करता है ना कोई व्यूअर सही जवाब भेजेगा, सो इनाम देने की जरूरत ही किधर से है।
2: वाकई जी वाकई, आपका जवाब नहीं।
0: ओ जी अपना हीरो बड़ा समझदार है जी, ना तो वो कानून अपने हाथ में लेता है और ना ही प्रोड्यूसर का पैसा फालतू इनाम शिनाम में लगवाता है।
2: तो फिर आगे क्या होता है बंटा सिंह जी? आगे
0: हीरो हीरोइन को झोपड़ी में ले जाता है।
2: हाँ।
0: और हीरोइन को कहता है ले सोनिए जाके नए कपड़े पाल ले, हूँ अगला सीन लौटा आएगा।
2: अरे क्या आपका हीरो पंजाबी में डायलॉग बोलता है?
0: अरे इसमें हारजी क्या है जी, अरे कम्युनल आर्मी के लिए तो सब करना ही पड़ता है।
2: चलिए कोई बात नहीं, आगे आगे आगे बोलिए। हाँ आगे बोलिए।
0: जैसे हीरोइन अपनी मैली ड्रेस चेंज करने के लिए उतार कर फेंकती है कि एक और कमर्शियल ब्रेक हो जाता है।
2: इतनी जल्दी कमर्शियल ब्रेक? कम से कम हीरोइन को कपड़े तो पहन लेने देते भाई।
0: अजी आप एडवर्टाइजमेंट देने वालों की डिमांड का भी तो ध्यान रखिएगा। हीरोइन के मैले कपड़े देख के व्यूअर को अपने मैले कपड़े याद आ जाएंगे और उन्हें वॉशिंग सोप की जरूरत पड़ेगी, इसी जगह का डिटर्जेंट ही किया गया एडवर्टाइजमेंट है।
2: लेकिन पहले हीरोइन को कपड़े तो पहन लेने देते भाई।
0: की फर्क बनता है जी, हीरोइन ने तो वैसे ही लीस्ट कपड़े ही पहने हैं क्योंकि बुरके में तो लव सॉन्ग हो ही नहीं सकता।
2: देखिए जी बंटा सिंह जी, मुझे फैमिली वालों के लिए सीरियल बनाना है इसलिए आपको हीरोइन को तो कपड़े पहनाने ही पड़ेंगे। हाँ
0: तो जब आप इतनी जिद कर रहे हैं जी तो चलिए पहना देंगे, लेकिन पहले एक कमर्शियल ब्रेक। हाँ जी
2: ठीक है जी, ठीक है आगे सुनाइए आगे सुनाइए।
0: हीरोइन ने एक ओवरकोट पहन रखा है, हीरो ने निकर बनियान पहन रखी है, एक स्विमिंग पूल में हीरोइन हीरो को धक्का देती है, पीछे से एक लव सॉन्ग चलता है।
2: लेकिन ये कॉस्ट्यूम और ये हीरो को पानी में धकेलना कुछ उल्टा सीधा लग रहा है, इसलिए सीक्वेंस को चेंज कर ले तो ज्यादा।
0: और देखिए साहब ये तो दर्शकों की डिमांड है, सो ये सीन तो रखना ही पड़ेगा। वैसे ये जो आपका उल्टा सीधा लग रहा है ना, ये वास्तव में ओरिजिनल सीन का फैमिली वर्जन है।
2: फैमिली वर्जन?
0: हाँ।
2: मैं कुछ समझा नहीं बंटा सिंह।
0: और गल यूं है जी कि ओरिजिनल सीन में जो ड्रेस हीरो ने पहन रखी है यानी निकर बनियान वो जो हीरोइन पहनती है, और जो ओवरकोट हीरोइन ने पहन रखा वो हीरो पहनता है, तब स्विमिंग पूल में हीरोइन गिरती है और हीरो उसको निकाल के लाता है।

0: अब क्योंकि आपका सीरियल फैमिली की सीरियल है इसलिए इस सीन को उल्टा कर दिया।
1: बंटा सिंह जी आपको तो हॉलीवुड में होना चाहिए।
0: जी जी हाँ साहब जाएगा, शुक्रिया जी। जैसे ही हीरो पानी में गिरता है हीरोइन हीरो को पानी में से निकाल के लाती है, इतने में कमर्शियल ब्रेक। फेंक दो अपने घर की श्री चिज्जे और ले आइए हमारे दुकान से नई चिज्जे।
1: ये क्या फिर कमर्शियल ब्रेक? अरे इतने कमर्शियल ब्रेक होंगे एक एपिसोड में?
0: तुझे समझ देनी होगी। अरे जितने ज्यादा कमर्शियल ब्रेक होंगे उतना ही पैसा मिलेगा, साडा सीरियल भी मेगा सीरियल होगा।
1: ओफो बंटा सिंह जी, हमें सीरियल का नाम बदलकर कमर्शियल ब्रेक रख देना चाहिए, कमर्शियल ब्रेक।
0: ओके गल कितनी है जी पाजी, वो दिल खुश कर दिता, मजा आ जाऊंगा। मेगा सीरियल लाखों के बजट का और जिस दे भी थे एक्शन थ्रिल और सस्पेंस भी हो जाऊंगा।
1: यू शट अप, बंद करो अपनी बकवास, नॉनसेंस। Get out from here, otherwise I will shoot you. I will shoot you. Get out from here. No, go. No.

विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे झलकी, कमर्शियल ब्रेक। आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है।

FM बैंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि का 8:45 होने को है, कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संदेश से हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को खेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम मानवता को नई आशा भर देते। हमें उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया, सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादुल जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष के इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशन हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियो पोलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और

0: सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि इस समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: सरकार में चिपमान सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 परिव्यय के सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग प्रतिशत हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
3: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60 हजार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
1: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2013 में दिए गए निर्देश के बावजूद एसिड की आसानी से उपलब्धता को लेकर चिंताओं के बीच आज केंद्र सरकार से पूछा है कि एसिड की खुदरा बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या इसे और कड़े नियमों के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। न्यायालय ने केंद्र, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 सप्ताह के भीतर एसिड हमले के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए उचित नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के बाद मसौदा सूची जारी कर दिया है। सूची के अनुसार 97 लाख से अधिक मतदाता इसमें शामिल हैं, जबकि 47 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी ने बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम सूची में नहीं हैं, वे 30 सितंबर तक फॉर्म 6 और आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे दाखिल कर सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची नवंबर में जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का

0: वाहनों की कमी के कारण खतरनाक इलाकों में बचाव अभियान विशेष रूप से कठिन हो रहा है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बाढ़ को विनाशकारी प्राकृतिक आपदा बताया है। भारत ने नेपाल में बचाव कार्यों और पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए विशेष दल तैनात किए हैं। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में जलभराव के कारण जनजीवन प्रभावित है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगा मयूम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बातचीत में नौबहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई और एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। रात्रि के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए दर्द भरे गीत। यह है पहली पेशकश। आवाज़ मुकेश की है। फिल्म का नाम आग।

ये गीत हमने लिया है फिल्म आह से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें हैं।

ये है अगला गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और मोहम्मद रफ़ी की है, उसके साथ में आशा भोसले और साथियों की भी आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम आज और कल।

ये गीत अभी आपने सुना हमने लिया था फिल्म आकाशदीप से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी। इसी गीत के साथ ही दर्द भरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। FM एंड 103.7 MHz पर आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। रात्रि का 9:15 हुए हैं। अब से लेकर रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुर फिल्म का गाना। लकी अली और सुनिधि चौहान की आवाजों में गीत निदा फाजली का है, संगीत MM करीम का।

आइए सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। संगीत आनंद मिलिन का है, फिल्म का नाम है लाल दुपट्टा मलमल का।

इस गाने के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की प्रीति शर्मा को दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ध्वनि तरंगों की ताल पर आप हैं विविध भारती के संग देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल। थोड़ी ही देर में सुनिए आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जिसके रुपहले पर्दे पर आते ही न जाने कितने दिल धड़क जाते थे।

0: जी हाँ, वो हैंडसम तो थे पर वो हीरो नहीं थे। और ये जो दिल धड़कते थे, ये रोमांच में नहीं धड़कते थे बल्कि किसी आशंका में धड़कते थे। क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें कर रहे हैं हिंदी फिल्म संसार के एक खूंखार और दबंग विलेन की, जिनका नाम है के एन सिंह।
1: मैं कहता हूं छोड़ दो उसे।

का जन्म 1 सितंबर 1908 को देहरादून में हुआ था। के एन सिंह का पूरा नाम था कृष्ण निरंजन सिंह। पिता चंडीदास एक जाने माने क्रिमिनल लॉयर थे और चाहते थे कि बेटा भी उनकी तरह एक क्रिमिनल लॉयर ही बने, पर ऐसा न हुआ। के एन सिंह पढ़ने के लिए लखनऊ भेजे गए। वहां उनकी दोस्ती हो गई कुंदन लाल सहकल से।

पढ़ाई खत्म करके केएन सिंह देहरादून आ गए। पिता चाहते थे कि बेटा जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और बेटे ने भी कई काम आजमाए। कृष्ण निरंजन ने कभी लाहौर जाकर प्रिंटिंग प्रेस स्थापित कर दिया तो कभी राजे रजवाड़ों के पालने के लिए जंगली जानवरों की सप्लाई की। इसके अलावा फौज में खुखरी की सप्लाई का धंधा भी किया, पर ये कोई भी कारोबार उनके मन के मुताबिक नहीं था, इसलिए एक भी काम में कृष्ण निरंजन जमे नहीं। इस तरह से पिता परेशान होते रहे कि न जाने ये बेटा आगे चलकर क्या करेगा, किसी काम में इसका मन नहीं लग रहा है। इससे तो अच्छा ये होता कि ये लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई करता और मेरी तरह वकील बन जाता। पिता ने ये सोचा कि किसी तरह से इस लड़के को जिम्मेदार बनाया जाए और इस तरह से सन 1930 में कृष्ण निरंजन की शादी करवा दी गई।

शादी के कुछ दिन के बाद कृष्ण निरंजन ने केसर या जाफरान की सप्लाई का धंधा शुरू किया। ये काम फलने फूलने लगा, परिवार में खुशियां लौट आईं। पिता को लगा कि बेटा अपनी जिंदगी में जम रहा है। पर इसी दौरान कृष्ण निरंजन की पत्नी बीमार पड़ गईं। ये वो दौर था जब चिकित्सा सुविधाएं उतनी उपलब्ध नहीं थीं और इंजेक्शन आम आदमी तक नहीं पहुंचा था। जब तक पत्नी की बीमारी की सही वजह पता चलती

थी, पत्नी का निधन हो गया। पत्नी की बीमारी और उसके इलाज में उलझे के एन सिंह अपने कारोबार पर ध्यान नहीं दे पाए और उनके साझीदारों ने उनके बिजनेस पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद जैसे तैसे के एन सिंह ने एक नया काम शुरू किया। उन्होंने एक अंग्रेज लड़की के साथ मिलकर रुड़की में एक स्कूल खोला, पर वो भी नहीं चल पाया। फिर बासमती चावल की सप्लाई का धंधा शुरू किया, वो भी नहीं चला। इसके बाद हुआ ये कि के एन सिंह खेलों के मैदान की तरफ मुड़ गए। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स के लिए वो जेवलिन थ्रो और शॉटपुट स्पर्धाओं के लिए भारतीय टीम में चुने गए थे, पर एन मौके पर हुआ ये कि उनकी बहन की आंख का ऑपरेशन किया जाना था। चूंकि उनके जीजाजी उपलब्ध नहीं थे और के एन सिंह कुछ खास कर नहीं रहे थे, इसलिए उन्हें भेज दिया गया कोलकाता बहन का इलाज करवाने में मदद करने के लिए। इसी वजह से के एन सिंह 1936 के बर्लिन ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाए। चूंकि के एन सिंह कोलकाता जा रहे थे तो एक दोस्त ने पृथ्वीराज कपूर के नाम एक चिट्ठी लिखकर दे दी और ये कहा कि हो सकता है इस तरह तुम्हारा कोई काम बन जाए।

कि एनसिंग को याद आया कि यहाँ तो उनके बचपन का दोस्त कुंदन लाल सहगल भी है जो फिल्मों में स्टार बन चुका है। के एन सिंह ने पृथ्वीराज कपूर और कुंदन लाल सहगल से मुलाकात की। पृथ्वीराज कपूर ने के एन सिंह को देवकी बोस से मिलवाया। देवकी बोस उन दिनों चंडीदास, पूरन भगत, राजरानी मीरा जैसी कामयाब फिल्में बना चुके थे और अपनी बांग्ला फिल्म सुनार संसार का हिंदी संस्करण बना रहे थे। सन 1936 सुनहरा संसार फिल्म के जरिए के एन सिंह की फिल्म यात्रा शुरू हुई। इस फिल्म में उन्होंने एक डॉक्टर की छोटी मोटी भूमिका निभाई थी। बस यहां से खेल का मैदान पीछे छूट गया और कुंदन लाल सहगल फिल्मों में रमने लगे। A.R. कारदार को कुंदन लाल सहगल बड़े पसंद आए। वो उन्हें अपने साथ कोलकाता से मुंबई ले आए और सन 1938 में फिल्म बागबान में उन्हें एक्टिंग का मौका दिया। ये फिल्म 50 हफ्ते चली और के एन सिंह जम गए। के एन सिंह की बड़ी बड़ी डरावनी आंखें, देर तक पलके न झपकाना, कोट पैंट टाई हैट और मुंह में पाइप या सिगार, कुल मिलाकर ऐसी शख्सियत बनती थी जो काफी असरदार, दबंग और डरावनी थी। बस इन्हीं तेवरों की वजह से के एन सिंह विलेन के रोल करने लगे। सन 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा में उन्होंने जग्गा डाकू की भूमिका निभाई।

0: अपने इंटरव्यूज में वो जग्गा डाकू की भूमिका के लिए ख्वाजा अहमद अब्बास की बड़ी तारीफ किया करते थे। वो ये कहते थे कि रोल इतना अच्छा लिखा गया था कि तारीफ उन्हें मिलती रही इस भूमिका को निभाने के लिए। राज कपूर की फिल्म बरसात में के एन सिंह ने भूलू का किरदार निभाया था।
1: क्या बोलो?
2: इतने
1: सवेरे कैसे आ गए?
2: चल मेरे साथ चल, जल्दी चल।
1: लेकिन बात क्या है?
2: अरे उठ तो सही, जल्दी चल।
1: अरे मुझे अपने पांव से चलने, मैं खुद चलूंगा। अरे जिंदा तो है अभी?
3: हाँ।
1: देख पंजनारे के 8-10 फूल तोड़ ला
3: हो,
1: और बूटी मिलते ही उल्टे पर लौटा
3: हो।
1: लेकिन देख बूटी जा चुका, घर चलाइयो।
3: हाँ
1: जल्दी से आ, जल्दी।

0: भाई ये काम तो खत्म हो चला, तू जरा अच्छी तरह इसका ध्यान रखियो। हाँ ये लिप सूख जाए तो और लगा देना, मैं शाम को आऊंगा। जरा मेरा हाथ धुलाइयो भाई।
1: ओहो मगर कहाँ जाओगे वैद्य जी इसे इस तरह छोड़कर?
0: नगीने की शादी कराने जा रहा हूँ, अब तो पक्के मुहूर्त का वक्त आ गया।
1: नगीने शादी? वैद्य जी वैद्य जी वैद्य जी
0: अरे कुछ कहेगा भी?
1: मेरी शादी कभी नहीं हो सकती।
0: अरे जालिम तुझसे शादी करके कौन अपनी हड्डियों को चूर कराएगी?
1: अभी पक्की नहीं तो कच्ची शादी करा दो क्यों बैठ जी?
0: अच्छा अच्छा इंतजार करो, तेरे लिए भी भगवान कहीं से छप्पर फाड़ के भेज देंगे तो फिर हो जाएगी तेरी भी शादी।
2: बैठ जी अगर छप्पर के बजाय पानी के रास्ते भेज दे तो कोई हर्ज
0: है? ठीक है भेज देंगे।
1: ये कितने दिनों में जिंदा हो जाएगी?
0: बस ये कोई 15-20 दिन।
1: बैठ जी भगवान देखो जरूर है
0: तो?
1: देख लो दरिया में बहा कर भेज दी उसने बहु मेरे लिए।
0: हाँ भाई सुना तो था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन आज तो उन्होंने दरिया फाड़ कर दे दी तुम्हें ये परी।
2: बैठी है थोड़ी खूबसूरत क्यों?
0: हाँ भाई ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, मुझे तो जिन वाली कहानी याद आती है जो कोका के परी को उठा ला।
3: शक्ति सामंत को के एन सिंह बड़े पसंद थे, इसलिए अपनी हर फिल्म में वो उनके लिए कोई ना कोई रोल जरूर रखा करते थे। फिल्म इंस्पेक्टर बद्री प्रसाद की भूमिका, फिल्म हावड़ा ब्रिज प्यारे लाल की भूमिका, फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के एन सिंह नजर आए जैक की भूमिका में। हुआ ये कि अपने दबंग अभिनय की वजह से के एन सिंह चोटी के खलनायक बन गए। उनकी गिनती प्राण कन्हैया लाल और जीवन जैसे खलनायकों के साथ होने लगी। आगे चलकर प्रेम चोपड़ा रणजीत अजीत अमजद खान डैनी और न जाने कितने खलनायक आए, पर के एन सिंह एक चोटी के खलनायकों के रूप में गिने जाए।

0: फिल्म हुमायूं में महबूब खान ने उन्हें एक दिलचस्प किरदार दिया था। अशोक कुमार के साथ वो नजर आए चलती का नाम गाड़ी में।
1: अजय सुनाओ सरदारा, क्या हाल है?

शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के एन सिंह की यादगार फिल्म है।

चिन्नप्पा देवर की फिल्म हाथी मेरे साथी, गुरुदत्त के साथ फिल्म बाजी, राज खोसला की वो कौन थी, फिल्म आम्रपाली में के एन सिंह बलभद्र सिंह की एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए थे, फिल्म दूल्हा दुल्हन में वो बने थे ठाकुर धर्म सिंह, फिल्म मेरा साया में वो वकील की भूमिका में थे।

इस कार्यक्रम में शामिल किए गए थे उन फिल्मों के गाने जिनमें के एन सिंह एक जबरदस्त भूमिका में नजर आए। फिल्म पगला कहीं का में वो मैक्स की भूमिका में नजर आए। सन 1938 में आई फिल्म सुनहरे दिन से लेकर 90 के दशक तक तकरीबन 55 सालों का लंबा करियर रहा कृष्ण निरंजन सिंह का, और वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे। किसी भी फिल्म में जब के एन सिंह की एंट्री होती तो लोगों का दिल थक से रह जाता कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर होने वाला है। 50 और 60 के दशक में तो के एन सिंह जबरदस्त कामयाबी की लहर पर सवार थे, पर हर कामयाबी की लहर एक दिन खत्म भी होती है। ऐसा भी हुआ कि आखिरी दिनों में उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई थी। के एन सिंह के करियर का कमाल देखिए कि फिल्मों की कई पीढ़ियों ने उनके साथ काम किया। पृथ्वीराज कपूर के साथ उन्होंने काम किया तो राज कपूर के साथ भी, और सन 1975 में राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर के साथ भी वो नजर आए रफू चक्कर में।

हाँ, कुंदनलाल सहगल, मोतीलाल, दिलीप कुमार, देव आनंद और गुरुदत्त के साथ काम किया। वहीं सुनील दत्त और मनोज कुमार के साथ भी काम किया। यहां तक कि उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया फिल्म कालिया में। सन 1983 में फिल्म कालिया आई। यहां तक अभिनय से के एन सिंह का मन पूरी तरह से उचाट होने लगा था। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपने भतीजे पुष्कर को बेटे की तरह पाला और आखिरी दिनों में उसी ने उनकी देखभाल की। सन 1999 में वे फिसल कर गिर गए और पैर की एक हड्डी टूट गई। इसके बाद 31 जनवरी सन 2000 तक वो केवल बिस्तर पर ही रहे बीमारी की अवस्था में। सन 2000 में 31 जनवरी को इस कद्दावर अभिनेता ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। फिल्म अजूबा सन 1991 में आई थी और ये के एन सिंह की आखिरी फिल्म बन गई।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। हमारी आज की यह सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:51 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।